0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जाँच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रोमांच लगातार परवान चढ़ रहा है। कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों की जुनून, दर्शक दीर्घाओं में लहराते तिरंगे और शानदार रैलियों पर दर्शकों की तालियों ने भारत की मेजबानी को और भी खास बना दिया है। बेशक पांच बार की विश्व चैंपियनशिप की मेडलिस्ट पीवी सिंधु और छुपेरुस्तम साबित हो रहे आयुष शेट्टी की चुनौती भले ही थम गई हो, लेकिन भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर अब भी उम्मीदों से भरी है। युगल में भारतीय खिलाड़ी अब भी पदक की रेस में डटे हैं। दिल्ली की धरती पर अपने ही दर्शकों के सामने अब भारतीय शटलरों के पास हार की निराशा को पीछे छोड़कर नए जोश के साथ आगे बढ़ने का मौका है, क्योंकि चैंपियनशिप अभी बाकी है और भारत की उम्मीदें भी। विश्व चैंपियनशिप के चौथे दिन महिला युगल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का शानदार अभियान क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। त्रिशा गायत्री ने प्री क्वार्टर में आज जापान की रेन इवांगा और काई नाकानिशी की जोड़ी को 21-16, 21-12 से हराया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-16 से जीत हासिल की। दमदार स्मैश और बेहतरीन क्रॉस कोर्ट रिटर्न से दबदबा बनाए रखा। जापानी जोड़ी दूसरे गेम में बिल्कुल रिदम में नहीं दिखी, ज्यादातर शॉट गैलरी और बैक लाइन के बाहर गिरी। हालांकि त्रिशा गायत्री ने नेट पर कई अंक गंवाए भी। गायत्री ने माना मुकाबला काफी कड़ा था, शुरुआत में शॉट सही नहीं पड़ रहे थे।
1: इनिशियली वाज अ प्रीटी नेक टू नेक, बट देन आई थिंक वी लुक्ड आवर कोचेस एंड दे गिव अस सम टिप्स, सो आई थिंक वी वर अटैकिंग अ लॉट मोर इन द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट गेम एंड द सेकंड सेट। या इट वर्कड इन आवर फेवर। दो तीन पॉइंट के बाद समझ आया कैसे खेलना है।
0: पहले गेम के बाद दूसरा गेम भारतीय जोड़ी के लिए आसान रहा। त्रिशा ने कहा कोच के गुरुमंत्र बेहद काम आए।
1: दे गिव अस अ फ्यू टिप्स दैट वर रियली हेल्पफुल मेंटली एंड फिजिकली, वी इंप्लीमेंटेड इट। ही जस्ट टोल्ड अस टू स्टे काम, focus on attack,
2: then we just want to take it more focused and everything. We came here with a goal and we are focusing on that.
0: आपसी तालमेल के बारे में त्रिशा ने कहा कि अपनी कमजोरी और ताकत को बेहतर जानते हैं।
2: The rotation and the attacking, it's one of our strength. While playing also, it's really working. When we are leading also, like a little bit calm, because at this level, we need to be really calm and just be in that moment. Every point is matters.
0: महिला एकल में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु का सफर प्री क्वार्टर में चीन की वेंग जी के सामने थम जरूर गया, लेकिन रैंकिंग में अपने से बेहतर और उम्र में अपने से 5 साल युवा चीनी खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु ने दिखा दिया कि 31 साल की उम्र में भी उनमें पुराना जोश और दमखम अभी बाकी है। सिंधु को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में 21-11, 15-21, 21-17 से हार

0: का सामना करना पड़ा। पहले गेम की शुरुआत में सिंधु पिछड़ रही थी, लेकिन रफ्तार रफ्तार उन्होंने रफ्तार पकड़ ली और स्कोर 7-7 कर दिया। लेकिन चीनी खिलाड़ी के तर्कश में विविधता भरे शॉट थे। पहला गेम वेंग जी ने 21-11 से जीत लिया। घरेलू दर्शकों के समर्थन ने सिंधु में नई ऊर्जा भर दी। दूसरे गेम में सिंधु का प्रभाव पूरे उफान पर था। उन्होंने 3-0 की बढ़त ली और फिर उसे 7-2 कर दिया। हालांकि वेंग ने वापसी की और स्कोर 15-15 की बराबरी पर ले आई, लेकिन सिंधु उस मिट्टी की नहीं बनी जो आसानी से हार मान ले। दूसरा गेम 21-15 से जीतकर उन्होंने मैच में वापसी की। निर्णायक गेम में कांटे की टक्कर हुई, 5 बार तो स्कोर बराबरी पर आ टंगा। पहले 9-9, फिर 13-13, फिर 15-15, 16-16 और 17-17। कोई हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे में वेंग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। लेकिन मेडिकल ब्रेक के बाद वे फिर कोर्ट पर उतरी, लेकिन जल्द ही फिर इंजरी की शिकायत की, पर दर्द के बावजूद डटे रहने का फैसला किया और अंतिम 2 अंक लेने के बाद जीत हासिल कर कोर्ट पर लेट गईं। सिंधु ने माना मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन उन्हें और संयम की जरूरत थी।
1: थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से। बहुत अच्छा चल रहा था गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। इन द ओवरऑल गेम लाइक स्पेशली इन द एंड बिकॉज आई कांट सी एनी लूप होल्स इन बिटवीन द पॉइंट्स, द लास्ट 3 पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट। आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंस, दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम टुडेस गेम। एंड व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक्स।
0: पुरुष युगल में सात्विक रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को प्री क्वार्टर में उतरने का मौका मिल ही गया। पहले दौर में उन्हें बाई मिला था और दूसरे दौर में स्कॉटलैंड की जोड़ी चोट के कारण हट गई थी। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीत चुके सात्विक चिराग ने मलेशिया के जुनेदी आरिफ और येप रॉय किंग को 3 गेम के मुकाबले में 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। रोमांच के शिखर तक पहुंचे मुकाबले के बाद दर्शकों का जोश पूरे आईजी स्टेडियम में गूंज उठा। सात्विक चिराग ने रोमांचक जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
2: जब भी हम कोर्ट पे जाने वाले थे पक्का सोचा था कि ऐसा होने वाला है, टफ होगा, इट वोंट बी इजी, थोड़ा कोर्ट कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगा। वी वर रेडी फॉर इट, वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, वी हैव टू प्ले द राइट काइंड ऑफ गेम बिकॉज इफ यू कीप इट सिंपल इनसाइड द कोर्ट पॉइंट्स आएंगे। वी न्यू लाइक वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, बट देयर हैव बीन सिचुएशंस इन द पास्ट वेयर वी नॉट प्लेड एट आवर बेस्ट, बट वी गॉट बैक and I think we just try to tell each other that eventually things will turn into your favor, just keep it simple, keep it inside the court and don't really complicate things.
0: भारतीय खिलाड़ियों के अन्य मुकाबलों की बात करें तो युवा शटलर आयुष शेट्टी का स्वप्निल सफर प्री क्वार्टर में इंडोनेशिया के 11वीं वरीयता प्राप्त अल्वी फरान के सामने 21-19, 21-11 से थम गया। आयुष ने शुरुआत में 3 अंक बटोरकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद फरहान ने वापसी की और स्कोर 7-7 पर ले आए। दोनों खिलाड़ियों के बीच 1-1 अंक बटोरने को लेकर कड़ी जद्दोजहद चली। मैच पेंडुलम की तरह कभी आयुष और कभी फरहान के पाले में झूलता नजर आ रहा था। अंत में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में आयुष फरहान के बीच फिर कड़ी टक्कर हुई, लेकिन फरहान ने अंततः 21-11 के साथ दूसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। आयुष ने माना कि पहले गेम में मौके थे, लेकिन वह इसे भुना नहीं पाए।
3: He was playing really sharp today. I had my chances in the first game, couldn't convert it. And I think second game he was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not giving much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp getting the lines. That made a lot of difference, I would say. He played much better badminton and he was a better man.
0: आयुष के खिलाफ जीत हासिल करने वाले फरहान ने कहा,
4: I know Ayush have a lot of pressure because he playing at home, so right. That's why I mean I took that for my motivation and I'm just gonna be like when I was leading, I'm just gonna be present and just think that only one by one. So I think that's the main point.
0: कहते हैं खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। विश्व चैंपियनशिप के मंच पर आयुष शेट्टी की तीसरे दौर में हार के साथ चुनौती जरूर टूट गई, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 शी युकी को हराने वाले भारत के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया प्रतिद्वंदियों को उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा की जोड़ी को चीन की दुनिया की 6 नंबर की जोड़ी गुआ चीन वा और चैन फेंग ने 21-16, 21-5 से हरा दिया। इस जोड़ी ने माना कि वे चीनी जोड़ी की तेजी का सही ढंग से सामना नहीं कर पाए।
5: हमारे हाथ में बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था, उन्होंने पूरा मैच काफी अच्छे से कंट्रोल किया था। यही कहना चाहूंगी हमारे साइड से बहुत गलतियां हुई है, उनको काफी इजी पॉइंट्स मिल गए थे, हमने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया, उसकी वजह से मैच ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत इजीली मैच जीते हैं।
0: तनिषा ने कहा कि वे अपनी गलतियों पर काम करेंगे और मजबूत वापसी करेंगे।
5: इट्स सर्टेनली वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, बट आई थिंक आई जस्ट लाइक टू टेल माई सेल्फ एंड ध्रुव दैट दिस इज नॉट द लास्ट मैच एंड दैट वी हैव

0: So many more matches to go. It's just an experience. It's disappointing, but we have much bigger events coming up. The only thing I can take back from this match is a lot of learning. We got to go back, watch our matches, learn a lot from it, and prepare better, come back better, and I'm sure there'll be a win in our bag very soon.
1: भारत के अलावा अन्य मुकाबलों की बात करें तो महिला एकल में दुनिया की नंबर एक दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने डेनमार्क की मिया बिलिच फेल्टेट को 21-16, 21-10 से हराया। पुरुष एकल में 2021 के विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू को कनाडा के विक्टर लाई ने 22-20, 21-18 से पराजित कर दिया। पिछली विश्व चैंपियनशिप में विक्टर ने लो किन को हराकर ही कांस्य पदक जीता था। पुरुष युगल में दुनिया की नंबर एक और पिछली चैंपियन जोड़ी दक्षिण कोरिया के किम हॉन हो और सो सुयुंग जो ने इंग्लैंड के बेन लेन और सीएन वेंडी को 21-13, 21-16 से पराजित कर दिया। महिला एकल में पूर्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा ने भारतीय मूल की अमेरिकी खिलाड़ी इशिका जायसवाल को 21-11, 13-21, 21-12 से हरा दिया। इसके अलावा चौथे दिन डेनमार्क के रास्मस गेमके ने तीसरी वरीयता के जोनाथन क्रिस्टी को 11-21, 21-13, 21-18 से हराकर उलटफेर कर दिया। अब पांचवें दिन सात्विक चिराग का सामना क्वार्टर फाइनल में चीन के लियांग वेई कैंग और वांग चेंग से होगा, जबकि त्रिशा और गायत्री की भारतीय जोड़ी चीन की जिया यी फेन और झांगशू जियांस के साथ खेलेगी। महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन शे यंग के सामने चीन की हान यूई होंगी और पुरुष एकल में एंडरसन का सामना जापान के कोदई नाराओका से होगा। भारत की पदक की उम्मीदें अब युगल मुकाबलों पर हैं। देखते हैं अपनी मेजबानी में पदक के लिए जुगलबंदी कितनी कारगर रहती है। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं नवीन कुमार शर्मा।

0: श्रोतेहो 10 वाजता FM गोल्ड वाहिनीवरती आपल्यासोबत असणार RJ अर्चना आणि 2 वाजता 2 ते 5 या कार्यक्रमात आपल्यासोबत असणार RJ ओम. मराठी गीतांचा आस्वाद तुम्ही आवर्जून घेता आणि त्याच्यामुळे आज कोण आहे हे तुम्हाला सांगितलं. 8 वाजतांची वेळ बातम्यांची वेळ 8, 8:15, 8:30 आणि 8:40 वाजता तुम्ही ऐकणार आहात पुढचा कार्यक्रम.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान. गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया. भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा. जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया. अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए. और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया.
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है. श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही. उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया. श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया. बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए. बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति

0: स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाय के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगो रोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
5: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक

कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है। इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। चीन में कल से रोबोट ओलंपिक बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुप्रभात, सलाम, गुड मॉर्निंग। 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का आज प्रिया तहे दिल से स्वागत करती है। सुबह के 8:40 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई।

0: फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: जी हाँ, म्यूजिकली ईयर्स 8:56 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये जो प्रसारण है, आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। तो चलिए, आप सभी श्रोताओं का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत। किसी ने बहुत प्यारा सा मैसेज मुझे भेजा है कि उठो कि अब सूरज ने दस्तक दी है, अंधेरों को चीर कर रोशनी ने अपनी जगह ले ली है, मायूसी को छोड़ो और कदम आगे बढ़ाओ। जी हाँ, क्योंकि इस नई सुबह ने तुम्हें एक और कामयाबी की वजह दी है। आप सभी श्रोताओं के मैसेजेस हमारी और आ रहे हैं, ढेर सारे मैसेजेस मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

9:01 हो चुके हैं। फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। ओमकार काटकर, मनीषा फंड से, विजेंद्र घाटोल अकुला से हैं, फिरोज सिंगनपुरिया, महेश जी हैं बोहरा अजमेर राजस्थान से, शुभलक्ष्मी जी हैं, चेतन कुमार गया बिहार से हैं, दीपा पालकर जी, रजनीकांत पाटिल हैं वार्ड वन से हैं, प्रमोद चिंचोलकर, गणेश पाटिल, प्रमोद कारखानीस, डॉक्टर अंजू है अंधेरी से, राकेश माथुर जी हैं, आर्यन सूर्यवंशी है, ममता महेश भाटकर है, पंकज मोहट जी है, श्रीधर जी है, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है उसके लिए आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई आरजे प्रिया के साथ। तो मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह हमारी सुबह भी दौड़ने लगी है, पर चाय की टपरी पर कटिंग चाय की चुस्की लेते हुए थोड़ा ठहरिए, क्योंकि आज तारीख है 21 अगस्त। और जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, हमारे आज में भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या मस्त और बड़ी बातें दर्ज हुई। लेकिन उससे पहले एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

यहाँ बिल्कुल मौसम मस्ताना है और स्वागत है फिर एक बार आप सभी का सुबह के इस बेहद खूबसूरत और रूहानी शो में। मैं आज प्रिया लेकर आई हूँ आपके लिए मीठे तराने और ढेर सारी बातें, तो मुस्कुराइए क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं। और बात हो रही थी इतिहास के पन्नों में क्या क्या मस्त मस्त है उसकी, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के बेजुबान दोस्तों और जंगल की। जी हाँ, आज ही के दिन 21 अगस्त 1972 को भारत की संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। सोचो मुंबई कर्स, अगर संजय गांधी नेशनल पार्क के तेंदुए और आरे जो है वहाँ हमारे जो पेड़ सुरक्षित है, तो इस कानून का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के दिन जंगलों और जानवरों को सुरक्षित रखने का हमें वादा करना चाहिए अपने आप से।

0: न्यूज ऑन AIR ऍप सह FM गोल्ड 100.1 MHz वर.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना.
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू.
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध. शर्तें लागू.
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना. कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. एनरिचिंग लाइफ.
0: श्रोताओं, जब भी संगीत की बात आती है तो दिल अपने आप सुकून में डूब जाता है ना? लेकिन आज का दिन संगीत की दुनिया के लिए एक भावुक कर देने वाला दिन भी है. 21 अगस्त 2006 को भारत रत्न से सम्मानित शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था. उनकी शहनाई की वो तान आज भी हमारे साथ है और हमारे कानों में गूंजती है तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. खान साहब हमेशा कहते थे कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत सिर्फ दिलों को जोड़ता है, बिल्कुल हमारे और आपकी तरह, जो सबको गले लगा लेती है.

आज संगीत प्रेमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को याद कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या है खास बताऊंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए एक इंटरनेशनल गॉसिप आपके साथ शेयर करती हूँ। दुनिया की सबसे मशहूर और रहस्यमय मुस्कान वाली पेंटिंग कौन सी है? अगर ये सवाल हम किसी से भी पूछते हैं तो जवाब जी हाँ सही पकड़े हैं, मोनालिसा की। और आज ही के दिन 21 अगस्त 1911 को पेरिस के लूवर म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी। और मज़े की बात सुनो, उस चोरी के बाद ही ये पेंटिंग दुनिया भर में इतनी पॉपुलर हुई। तो भाई चोरी होना भी कभी कभी इतिहास बना देता है, लेकिन आप लोग अपनी गाड़ी की चाबी और लोकल में अपना वॉलेट संभाल कर रखिए, ठीक है ना?

9:21 तो हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम आरजे प्रिया के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप. और बहुत कुछ सुना रही हूँ मैं, गॉसिप्स भी बता रही हूँ. तो चलिए बात तो कर रहे हैं हम आज के दिन की विशेषताओं की. तो खेल प्रेमियों के लिए बता दूँ कि दुनिया के सबसे तेज रफ्तार इंसान लाइटनिंग उसेन बोल्ट का जन्म भी आज ही के दिन 1986 को हुआ था. और बोल्ट भाई तो ट्रैक पर दौड़ते थे, लेकिन हमारे मुंबई के लोग सुबह सुबह विरार लोकर पकड़ने के लिए जो दौड़ लगाते हैं ना, वो भी किसी ओलंपिक मेडल से कम नहीं है. क्या कहते हैं आप? तो चलिए कार्यक्रम को आगे वैसे बढ़ाते हैं और उम्मीद करती हूँ कि सुबह सुबह का जो ज्ञान मैंने आपको दिया है तो आपका मीटर फुल हो गया होगा. और आप वक्त है कुछ अच्छी अच्छी और भी बातों का. दरअसल आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन होता है और शुक्रवार के दिन हम मैटनी शो, जी हाँ, सुबह सुबह किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं. और आज किस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी बताऊंगी आपको, लेकिन इस गीत के उस पार तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए. यू गई यू आई.

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मनोरंजन पूरे परिवार का, कनेक्टिविटी पूरे भारत की, BSNL फाइबर सुपर प्लस OTT 1199 रुपए वाला प्लान अब पाई सिर्फ 1111 में, 200 Mbps, 25 OTT, 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग, सीमित अवधि का ऑफर। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-4444 पर कॉल करें। BSNL, हर परिवार का भरोसा।
3: जिथे पोहोचायला पक्के रस्ते नाहीत, जिथे मोबाईलचं नेटवर्कही काम करत नाही, अशा छत्तीसगडच्या घनदाट जंगलात नक्षलवादाच्या सावटाखाली कोणीतरी गेली 37 वर्ष प्रकाशाचे दूत बनून काम करत आहेत। शहरातील सुखासीन आयुष्य सोडून बस्तर आणि अबुझमाडच्या आदिवासी बांधवांचे अश्रू पुसणारे महाराष्ट्राचे एक सेवाव्रती दाम्पत्य, पद्मश्री डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले आणि सुनीता गोडबोले।
4: घोर जंगलात राहणाऱ्या ज्या कुपोषित आदिवासी मुलांच्या सेवेमुळे पद्म पुरस्कारापर्यंत आम्ही पोहोचलो, तर त्या मुलांचं दुःख, त्या मुलांची व्यथा, त्या मुलांचं आरोग्य हा विषय हायलाइट सगळीकडे होईल पद्मश्री पुरस्कारामुळे।
5: कुठल्याही वनवासी भागाला, मागासलेला किंवा समाजाला मागासलेला हा शब्दच मला अजिबात आवडत नाही। एकतर आमच्या डोक्यामध्ये हे पक्क आहे की आम्ही कुणाला सुधारायला गेलेलो नाही, तर त्यांच्या बरोबर राहून त्यांच्या सहवेदनेनी त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याच्यावर आपण उत्तर काढण्यासाठी गेलेलो आहोत।
3: हा खडतर प्रवास, अथांग माणुसकी आणि न डगमगणारी जिद्द जाणून घेण्यासाठी नक्की ऐका ही प्रेरणादायी मुलाखत अरण्यातील सेवाव्रती, शनिवार दिनांक 22 ऑगस्ट आणि रविवार दिनांक 23 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता न्यूज ऑन AIR ऍप सह FM गोल्ड 100.1 MHz वर।
6: तो चलिए, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मस्त मुंबई प्रोग्राम शुरू है और शुक्रवार का दिन है, तो तैयार हो जाइए, हमें मैटनी शो देखना है। और जैसा कि मैंने इन गीतों के और ब्रेक के उस पार कहा था कि आज कौन सी फिल्म ऐसी होगी जो हम देखेंगे, और तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्मकार मणिरत्नम की मास्टरपीस फिल्म, जी हाँ, दिल से की फिल्म में शाहरुख खान की वो शिद्दत, मनीषा कोइराला की वो रहस्यमयी आंखें और AR रहमान का वो संगीत जो आज भी कानों में पड़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब शाहरुख खान स्टेशन पर मनीषा कोइराला को पहली बार देखते हैं तो बैकग्राउंड में हवाएं चलने लगती है। इसी सीन का एक बेहद खूबसूरत डायलॉग है जहाँ पर अमर यानी कि शाहरुख खान कहता है कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ अगर कोई है तो वो है इंसान की ज़िंदगी, और सबसे लंबी चीज़ अगर कोई है तो वो है वक्त। मैं अपनी जिंदगी की छोटी सी कहानी में तुम्हारा थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। हाय, क्या बात है। तो चलिए, इस फिल्म के गीत तो हम सुनेंगे और फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये फिल्म आज के दिन यानी 21 अगस्त 1998 में, जी हाँ, 21 अगस्त 1998 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो अंदाज़ा लगाइए कितने साल पूरे हुए हैं इस फिल्म को रिलीज़ हुए आज। तो चलिए वो गाना सुनाती हूँ जिसने एक कहते ना कि ट्रेन की छत पर डांस करने का ट्रेंड सेट कर दिया था। चलती ट्रेन की छत पर बहती हुई खुली हवा के बीच जिंदगी का वो बेपरवाह डांस, जी हाँ, गुलजार साहब ने हवा के झोंके को जैसे शब्दों में कैद कर लिया हो, परछाई की तरह पीछे चलती महकती हुई वो हवा।

दिल से फिल्म देख रहे हैं आप? जी हाँ, देख रहे हैं यानी कि सुन रहे हैं, मेरी नज़र से देख रहे हैं, सुन रहे हैं मैटनी शो में. और दिल से फिल्म की बात हो रही है, तो चलिए इस फिल्म की शॉर्ट में आपको कहानी बता दूं कि इस फिल्म की कहानी में अमर एक रेडियो पत्रकार हैं जो ऑल इंडिया रेडियो में काम करता है, और वो जर्नलिस्ट भी है, शोज़ भी करता है हमारी तरह, आरजेस की तरह. इन शॉर्ट वो आरजे है और पत्रकार भी है. और जिसे एक अनजान लड़की मेघना से पहली नज़र में ही जुनूनी प्यार हो जाता है, और उसके बारे में कहा जा सकता है कि तेरी आंखों की सुर्खी में छिपा कोई राज है. तू ढूंढती है जिसे, क्या वो मौत की आवाज़ है? अमर मेघना की तलाश में लद्दाख के पहाड़ों से दिल्ली की सड़कों तक खाक छानता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब प्यार के बदले अमर के सामने एक खौफनाक सच आता है. मेघना कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक सुसाइड बॉम्बर है जो देश की राजधानी को दहलाने आई है. आगे क्या होता है बताऊंगी इस गीत के उस पार.

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस को

एक तरफ देश का फर्ज था, दूसरी तरफ उसका वो पागलपन जिसे दुनिया इश्क कहती है। आखिरी मोड़ पर जब मेघना बारूद से बंधी खड़ी थी, तब अमर ने पीछे हटने की बजाय मौत को गले लगाना सही समझा। उसने मेघना को कसकर थाम लिया, मानो कह रहा हो जीते जी तो हासिल न हुआ, वो मौत में पा लेंगे, तुम बारूद से दिल बहलाओ, हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। और बस धमाका हो जाता है और दोनों की अधूरी मोहब्बत हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाती है। यही कहानी थी फिल्म दिल से की। और दिल से के गीतों की बात करें तो इसकी विशेषता ये थी कि संगीतकार A.R. रहमान के जादुई संगीत और गुलजार साहब की आज़ाद और गहरी शायरी ने प्रकृति के मूल तत्व जैसे आग यानी कि तपिश, हवा, रोमांस और पानी यानी कि जीवन को इंसानी जज्बातों के साथ ऐसे पिरोया कि गीत सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस किए जाने लगे। और फिल्म दिल से की सबसे बड़ी विशेषता ये थी इसकी कहानी का बैकड्रॉप, जहाँ अमूमन हिंदी फिल्मों में विदेशों की वादियों में रोमांस किया जाता है, वही मणिरत्नम ने देश के नॉर्थ ईस्ट, जी हाँ, पूर्वोत्तर और लद्दाख के सुलगते

हालातों के बीच अमर प्रेम की कहानी उन्होंने बुनी और इस फिल्म में प्यार के सात पड़ावों को दिखाया गया। दिलकशी यानी कि आकर्षण, अट्रैक्शन, उन्स यानी आसक्ति, अटैचमेंट मोहब्बत यानी प्रेम, लव, अकीदत यानी विश्वास श्रद्धा, इबादत यानी पूजा वर्शिप, और जुनून यानी पागलपन, मौत यानी आत्मसमर्पण। आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए और सुनते रहिए 107.1 पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जहां पर आरजे प्रिया है आपके साथ और कार्यक्रम मस्त मुंबई में हम मैटनी शो में एंजॉय कर रहे हैं फिल्म दिल से।

दिल से फिल्म, आप इस फिल्म की कहानी सुन रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन रहे हैं और सोचिए 28 साल हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज हुए और ऐसा लग रहा है अभी अभी तो देखी थी, 28 साल इमेजिन नहीं कर पा रहे और इतने मतलब काफ़ी होते हैं 28 साल, लेकिन आपको लग रहा है कि 28 साल पहले ये फिल्म रिलीज़ हुई है। और इस फिल्म ने वैसे बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त बड़ी कोई कामयाबी हासिल नहीं की थी, लेकिन जी हाँ, ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसने यूनाइटेड किंगडम के बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 में अपनी जगह बना ली थी। और संतोष सिवन की जो सिनेमाटोग्राफी ने लद्दाख की वादियों को जिस तरह कैमरे में कैद किया था वो एक विजुअल पोएट्री जैसा लग रहा था। और आज अगर मुझे वक्त मिला तो मैं ज़रूर ये फिल्म फिर से देखूंगी, और आपको भी अगर वक्त मिला आज कल परसों जब भी तो इस फिल्म को ज़रूर इन्जॉय कीजिए। और फिल्म एक क्या कहे इस फिल्म को लेकर, एक खूबसूरत पोएट्री सच में कही

आ सकती हैं, और इस फिल्म की वजह से बॉलीवुड को एक नया चेहरा मिला था. जी हाँ, प्रीति जिंटा, जिन्होंने अपनी हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था इस फिल्म से. उनका रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जिया जले गाने में उनकी वो डिम्पल वाली मुस्कान और शाहरुख खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी, जुगलबंदी थी, वो वाकई में कमाल की थी. तो चलिए इसी बात पर जिया जले गाना आपको सुनाती हूँ. उसके ठीक बाद आप 10 बजे सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत प्रमुख समाचार, और उसके ठीक बाद जी हाँ नमस्ते भारत कार्यक्रम में क्या होगा खास. सुनते रहिए, कहीं मत जाइए. मैं यू गई, यू आई.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और अन्य देश के जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कल मुंबई के लोकभवन में 63वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह का आयोजन राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह समिति की केंद्रीय समिति ने किया। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण में आज एम्स्टरडम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।
2: आकाशवाणी FM रेनबो।
1: फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। सुबह के 10:02 हो चुके हैं। सुबह की जो भागदौड़ होती है वो थोड़ी सी थम सी गई होगी, थम होने की राह पर चल पड़ी होगी, और ऐसे में नमस्ते भारत प्रोग्राम तो बनता ही है। जी हाँ, आप सun रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। अगर आपका आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो अभी नोट कर लीजिए 8657661071 8657661071 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा लैंडलाइन नंबर है 4515-4132। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

मैं हूं ना, कि ये जो शब्द है ना, कितना वजन है पता है इस शब्द में। अगर हम किसी को कहते हैं मैं हूं ना, या कोई हमें कहता है मैं हूं ना, देखिए अगर जिंदगी में, अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी हम अगर उदास होते हैं या मायूस होते हैं या हमें लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, और ऐसे में अगर कहीं से आवाज़ आती है, कोई कह देता है जाना अनजाना या कोई भी मैं हूँ ना डोंट वरी, बहुत बड़ी बात होती है। और अगर अकेलापन सता है ज़िंदगी में, आप अकेले हो, कोई आसपास बात करने वाला नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है आपके लिए, इन शॉर्ट, और ऐसे में कोई आकर कहे मैं हूँ ना, तो कितनी बड़ी बात है। अब आप सोचोगे कि प्रिया को क्या हो गया है, नमस्ते भारत प्रोग्राम शुरू है और मैं हूँ ना करने जा रही हैं। क्योंकि आज दिन ही कुछ ऐसा है, क्योंकि आज का दिन कैलेंडर का कोई आम पन्ना नहीं है। वैसे हर दिन आम पन्ना होता नहीं है, कुछ ना कुछ खास तो होता ही है, और ऐसे में आज का दिन जो है, आज है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो मैंने सोचा हम नमस्ते भारत प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं, ऐसे में इस दिन के बारे में अगर बात की जाए और कहा जाए उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को, मैं हूँ ना, हम है ना, आपको किसका इंतज़ार है, तो सोचिए उनको कितना सुकून मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी उनको। तो आज नमस्ते भारत में ऐसी ही बातें करेंगे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे को लेकर, और कितने ज़रूरी है वो हमारी ज़िंदगी में। आप भी हमें बताइए आप आज के दिन के बारे में क्या सोचते हैं, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया था, फिर एक बार दोहराती हूँ, 8657661071 हमारा लैंडलाइन नंबर है, 4515-4132, 4515-4133। अगर टेक्निकल कारणों की वजह से अगर हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाए, तो आप हमें व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए, और सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो, जहां पर है आरजे प्रिया आपके साथ, और प्रोग्राम जिसका नाम है नमस्ते भारत।

0: कारोबार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

10:16 हो चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था आज सीनियर सिटीजन दिवस हम मना रहे हैं और आपसे पूछा था आप क्या सोच रहे हैं, तो हमारे श्रोता फिरोज सिंह अनपुरिया ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो हमेशा से ही सीनियर सिटीजन हैं जो वृद्ध हैं हमारे आसपास और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और अगर उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर हाथ आगे बढ़ाते हैं। दीपा पालकर जी कहती है कि वरिष्ठ नागरिक देश की संपत्ति है, उनके पास बहुत अनुभव होता है, बिल्कुल पूर्वकालीन परिस्थिति की जानकारी होती है, बाल बच्चों को प्यार दिया होता है उन्होंने और उनके हिफाजत करना ये सरकार और हम सभी की परिवार की सबकी जिम्मेदारी है। और सभी ने वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं आप सभी को। नए सभी श्रोता जो हैं जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें बता दूं कि नमस्ते भारत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो जहाँ पर है आरजे प्रिया आपके साथ। और दादर से बाबा जो है उन्हें गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। अंकित जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद चिंचोलकर है, धनंजय है नवी मुंबई से, प्रणव शिंदे जो है और शुभ लक्ष्मी जी है, आप सभी का फिर एक बार स्वागत। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हम में से कई लोग ऐसे हैं वरिष्ठ नागरिकों को जो अकेले हैं उन्हें ये ज़रूर कहते हैं कि मैं हूँ ना। और ये जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है हमारी और इतने हम बिज़ी हो जाते हैं कि वो पीछे छूट रहे उन सफ़ेद बालों और झुर्रियों वाले चेहरे को देखना हम भूल जाते हैं या कई बार हम जाने अनजाने में इग्नोर हो जाता है। कई बार हालात उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी तक ले जाते हैं, लेकिन आज इस खास मौके पर मैं आपको भारत की उस मिट्टी की सैर भी कराना चाहती हूँ। जी हाँ, आज भी अपनों की सेवा का संस्कार जिंदा है भारत में कई जगहों पर, भारत ही नहीं दुनिया भर में। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में अब ऐसे अनूठे गांव और समुदाय भी सामने आ रहे हैं जो अकेले पड़े बुजुर्गों का सहारा बन रहे हैं। वैसे गुजरात का एक छोटा गांव चानकी, उसकी ही मिसाल ले लीजिए, जहां के युवा जो रोज़गार के लिए गांव से बाहर है और जो भी बुज़ुर्ग हैं वो वहां पे रहते हैं, कई सारे उनमें से अकेले रहते हैं, तो उनके खान पान उनकी देखभाल की जिम्मेदारी कई बार इग्नोर हो जाती थी और ऐसे में वहाँ के सामुदायिक रसोई जो है वो बनाई गई और बुज़ुर्ग वहाँ पर खाना खाते हैं, मतलब उन्हें घर पे खाना नहीं बनाना पड़ता। उस गांव में तीनों वक्त खाना बनाया जाता है, सभी जो वहाँ पे और जो यंगस्टर्स हैं जो रह रहे हैं वो उन अकेले रह रहे हैं बुज़ुर्गों के लिए खाना बनाते हैं और उन्हें वो टेंशन नहीं है कि उनको खाना कौन खिलाएगा। कई मैंने ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं जिन्हें एक सब कुछ है उनके पास, लेकिन कभी मजबूरी होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, असुविधाएं होती हैं कि एक वक्त का खाना भी उन्हें मुश्किल से मिलता है। तो आज वैसे शुक्रवार को हम बात करते हैं गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, गांव की सैर कराते हैं। तो ये चांद की गांव जो है ना वो वाकई में मिसाल है जहाँ पर बुज़ुर्गों को तीनों टाइम घर पर खाना नहीं बनाना होता है, उनके घर में उनके बच्चे नहीं होते हैं, सब विदेशों में हैं, कहीं और गए हुए हैं और वो भी निश्चिंत हो जाते हैं और गांव में एकता जो है सामुदायिक जो भावना होती है प्यार मोहब्बत की वो बढ़ जाती है। आपको ये इस गांव का ये उदाहरण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

10:24 हो चुके हैं और प्राची शिंदे ने बेहद प्यारी सी एक लाइन हमें भेजी है. वो कहती हैं कि उम्र की ढलान पर ये समझ आया है, जो शोर बाहर था वो भीतर सन्नाटा पाया है. हर झुर्री कहती हैं दास्ता जिंदगी की, हमने ठोकरों से ही सही तजुर्बा पाया है. बैठे हैं खिड़की पर उम्मीद की आस लिए, बीता हुआ कल और यादों को पास लिए. सोचते हैं बस यही नई पीढ़ी समझ लेकर, हमारे तजुर्बे में ही उनकी जीत का राज है. हमें बुजुर्गों के साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए. थैंक यू सो मच प्राची शिंदे. और बहुत से लोगों ने अपने मैसेज भेजे हैं और विपिन कुमार ने भी इस दिन के लिए शुभकामनाएं दी है. शुभ लक्ष्मी जी कहती हैं कि आज का ये जो दिन है, वरिष्ठ नागरिक दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उनके पास जो अनुभव है, वरिष्ठ नागरिकों के पास, उनसे हमें वाकई में बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है. और दत्तात्रेय आड़त ने भी कहा है कि सीनियर सिटीजन की मदद करना बेहद ज़रूरी है और कानूनी, उनके लिए जो भी प्रावधान है, उनके लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, उनकी जानकारी भी हमें होना बहुत बहुत मायने

रखते हैं। तो चलिए, हम आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मना रहे हैं, और सोचिए कि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, तो हम उनकी कितनी बातें सुनते हैं, उनके पास कितना वक्त देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स अब एज हो चुकी होती है, उनसे बातें करना, क्या बातें करना, वो वही पुरानी बातें करेंगे, वही पुराने राग अलापेंगे, या हम जो कर रहे हैं उसको नाना नुकुर नुकुर करते। बच्चों को तो पेरेंट्स की नज़र से देखा जाए तो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते आपकी, और एक वक्त के बाद, क्योंकि उनकी अपनी सोच भी होती है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। कहते ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो बुजुर्ग और नई पीढ़ी, इन दोनों ने अगर एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाया और फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, ना कि रिश्तेदारी निभाए जा रहे, रिश्तेदारी निभाई जाती है। फ्रेंडशिप जो होती है, दोस्ती होती है, अपनापन होता है, उसमें कुछ निभाया नहीं जाता, उसमें रिस्पेक्ट होता है, प्यार होता है, अपनापन होता है, सही गलत हम बताते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो बुजुर्ग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपके घर में जो आपसे एक उम्र में कम है, जो भी है, आपके बच्चे हैं, नाते पोते जो भी है, उनके साथ उनके वो क्या कहना चाहते हैं वो भी सुने, और जो घर के जो अन्य सदस्य हैं वो भी कोशिश करें कि बुजुर्गों ने एक पूरी ज़िंदगी जी है। जी हाँ, उनके पास खजाना है अनुभवों का, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, उसे भी वक्त निकाल कर बैठ कर आपको सुनना पड़ेगा। जी हाँ, सुनना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, चीनी कम फिल्म का एक प्यारा सा गीत आपको सुनाती हूँ, और आशा करती हूँ ये गाना आपको पसंद आएगा।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वाकई में रोंगटे खड़े हो गए जब मैं ये गाना सुन रही थी। ये मैं कई बार सुन चुकी हूँ, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है और मैं शो कर रही हूँ, आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं और ये गाना लगाया मैंने, और कई लोगों के मैसेज तो आ ही गया कि बहुत अच्छा गाना है। लेकिन इस गाने को मैंने, ये गाना हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चे के साथ, हमारे प्यार के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, और अगर ये गाना हम घर के बुज़ुर्गों की नज़र से अगर देखें तो हम अगर उनको मिलते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, तो उनकी कितनी सारी मुश्किलें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी लिसनर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे अंदर वो फीलिंग्स, वाकई में एक कहते हैं ना, हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि घर पर ध्यान नहीं है, करियर को देखना है, घर भी देखना है, बच्चे देखने, सब देखना है, सब कुछ करना है, और ऐसे में बुज़ुर्गों का ख्याल बहुत कम आता है। हाँ, दादा दादी ना, हाँ है, किसी के होते हैं नहीं, मम्मी पापा, हाँ अब वो बूढ़े हो गए हैं, एज हो गई है, बस बोलते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। मैंने देखा है कई सारे बुज़ुर्गों को एक अब खिलौना मिल गया है, क्योंकि वो जो खिलौना पोता पोती सब आसपास रहते थे वो कहीं दूर जा चुका है, वो भी अपनी दुनिया में बिजी है। ऐसे में ये जो बुज़ुर्ग है ना, मैंने देखा है कई सारे बुज़ुर्गों के हाथ में मैं मोबाइल देखती हूँ, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, रील्स देखे जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, दो दो तीन तीन बजे तक वो मोबाइल देख रहे होते हैं, और ये सच्चाई है। और घर वाले भी शांत रहते हैं, क्योंकि हाँ वो तो अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, आजकल तो वो मोबाइल देखते हैं, लेकिन वो मोबाइल क्यों देखते हैं, क्यों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, रील्स पर रील्स देखे जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कौन सी रील्स सही है गलत है, कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी गलत है, बस देखे जा रहे देखे जा रहे, क्योंकि बात करने को कोई नहीं है, कोई नहीं है। और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ कि इनमें से कई सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो जिनकी उम्र हो चुकी है, जो 60+ है, 70+ है, 80+ है, 90+ वाले भी कई सारे लिसनर्स ऐसे आज मेरी आंखों के सामने वो सारे आ रहे हैं, क्योंकि आरजे के इस सफ़र में मेरे उन्होंने बहुत साथ दिया है। फ़ोन पर वो बातें करेंगे, कोई अपनी कहानी बताता था, कोई अकेला रहता है, हमें रात को शो करते वक्त भी कई बार ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं, मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। कई बुज़ुर्ग जो है रात को फ़ोन करके रोते हैं कि कोई देखने को नहीं है, कई बुज़ुर्ग जो है हमारा कुछ फ़ोन आने अचानक से बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आवाज़ के ज़रिए उनसे बात करते हैं, लेकिन अभी याद आ रहा है कि दो चार लोगों की तो कॉल ही नहीं आ रहे, उनका ना नंबर है ना वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन जब भी शो हो उनका कॉल आता था, वो आप कैसी हो, ठीक हो, उनकी वो कप कप आती आवाज़ सुनकर समझ में आता था। इनमें से कई जो है वो देखने में असमर्थ है, उम्र भी हो गई है, लेकिन बर्थडे के दिन फ़ोन करेंगे, कहीं भी रहो बर्थडे के दिन फ़ोन करेंगे, उनसे आप बात करो ना, वो आपकी पूरी बायोडाटा जान लेते हैं, आपकी केयर करते हैं, तब एहसास होता है कि वो कितने अकेले हैं। और एक वक्त ये भी आएगा कि हम भी वहाँ उसमें उस नाव में शामिल होने वाले हैं,

हम भी अकेले होने वाले हैं, ये सारी जद्दोजहद एक वक्त के बाद थमने वाली है, तब क्या होगा? तो कोशिश कीजिए कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है उनका रिस्पेक्ट कीजिए और वो जो कुछ कहना चाहते हैं सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग आपसे बात नहीं करते, वो बस बैठे रहते हैं, उनको ये चाहिए होता है कि आप भी उनके पास बैठे रहो बस। मैं पर्सनल अनुभव कभी नहीं करती बट मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं जब भी मेरे पापा के घर जाती हूँ हम बात नहीं करते ज़्यादा, वो बस एक ही बात कहते हैं, बैठो ना, कहाँ जा रही हो, बस बैठो। वो अपना मोबाइल देख रहा है बट बस तुम सामने बैठो। और तब एहसास होता है कि कितना प्यार है, कितना अपनापन है, कितनी केयर कर रहे हैं कि बस तुम नज़र आओ। तो ये जो बात है ना, वो मुँह से नहीं कहेंगे, हमें समझनी होगी। एक सोसाइटी है जहाँ एक अंकल है जिनको मैं रोज़ देखती हूँ, वो सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सोसाइटी के कंपाउंड में चेयर डालकर बैठ जाते हैं अकेले। घर में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वो दिन भर बाहर बैठे रहते हैं, ना बारिश, ना ठंड, ना धूप। फिर आने जाने वाले लोग उनसे हाय हेलो करते, वो उनके साथ ही वक्त बिताते हैं। बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, फैमिली में भी बहुत लोग हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। तो कोशिश कीजिए, और आज अगर आपने अपने बुज़ुर्गों से आज मिलना चाहेंगे, आप उनसे बात कीजिए, बस आज ही के दिन नहीं, आज से ये संकल्प लीजिए। तो देखिए उनको, उनके यहाँ पूछिए तबीयत कैसी है, उनको कुछ चाहिए क्या, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप सुनिए, क्योंकि अगर ये हमने नहीं किया ना तो एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगेगा कि अरे कुछ तो रह गया, कुछ तो छूट गया। तो क्योंकि वो बोझ नहीं है, हमारे घर का, हमारे सोसाइटी का अनमोल खजाना है, और उनकी जो दुआएं हैं ना वही हमारी असली ताकत है। चलिए, मेरा आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त अभी जल्द ही होने वाला है, और एक प्यारा सा गीत आपको सुनाती हूँ। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? सोशल मीडिया के ज़रिए आप आपकी दिल की बात, आपके जो भी कहना चाहते हैं ज़रूर कह सकते हैं। और तो चलिए, बेहद जल्द आपसे मुलाकात होगी, यही वादा करती हूँ। तो आज वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय, उसे सेलिब्रेट कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ, अगर कोई मिल जाए उनसे प्यार से बात कीजिए, और ये संकल्प लीजिए कि सिर्फ आज के दिन तक ही सीमित ना हो, ये आगे भी रोज़ चलता रहे। रोज़ के 5 मिनट भी बहुत होते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र से 107.1 FM रेनबो। और अब वक्त हो चुका है इस समय के मुख्य समाचारों का, जो इस प्रकार हैं। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के पास के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। हादसे के कारण इलाके में मालगाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। घायल

सभी लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3-4 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। मुंबई से लगे ठाणे, रायगढ़ और पुणे जिलों में भी इस दौरान मौसम साफ रहेगा। मुख्य समाचारों के अंत में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले में उतरेंगे। इससे पहले पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी तथा ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र से 107.1 एफएम रेनबो और आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, प्यार सिर्फ वो नहीं होता जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगें। प्यार तो शायद तब शुरू होता है जब एक के पास सपने हो और दूसरे के पास उन सपनों पर भरोसा। आज की कहानी है आरव और नैना की, दो ऐसे लोगों की जिन्होंने प्यार को सिर्फ आसान दिनों का साथी नहीं बनने दिया। आरव के पास अभिनय का सपना था लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। छोटे छोटे काम, असफलताएं, इंतजार और बार बार खुद को साबित करने की कोशिश, ये सारे थे आरव के दामन में। नैना ने उसके संघर्ष को दूर खड़े होकर नहीं देखा बल्कि उसके साथ उस सफर में कदम से कदम मिलाकर वो चली। जब दुनिया कह रही थी कि शायद ये नहीं कर पाएगा, तभी नैना के दिल की आवाज कह रही थी कि एक बार और कोशिश करो, एक बार और, बस हार मत मानना। और शायद यही था उनकी लाइफ का पहला ब्रेक फ्री, यानी लोगों की राय से आजाद होकर अपने रिश्ते और अपने सपनों पर भरोसा करना। आज यही कहानी आरव और नैना की आप सभी के लिए 107.1 एफएम रेनबो पर ब्रेक फ्री में, क्योंकि ब्रेक फ्री यही हमें कहता है, सिखाता है कि आजाद होना बहुत ज्यादा जरूरी, और ये आजाद सही मायनों में आजादी होनी चाहिए, खोखली नहीं, है ना। तो बने रहे, सुनते रहे, एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने आपको सुनने मिलेंगे 107.1 एफएम रेनबो पर। म्यूजिकली योर्स।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: मनोरंजन पूरे परिवार का कनेक्टिविटी पूरे भारत की BSNL Fiber Super Plus OTT 1199 रुपए वाला प्लान अब पाई सिर्फ 1111 में 200 Mbps 25 OTT 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग सीमित अवधि का ऑफर अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-444 पर कॉल करें BSNL हर परिवार का भरोसा
3: जिथे पोहोचायला पक्के रस्ते नाहीत जिथे मोबाईलचं नेटवर्कही काम करत नाही अशा छत्तीसगढच्या घनदाट जंगलात नक्षलवादाच्या सावटाखाली कुणीतरी गेली 37 वर्ष प्रकाशाचे दूत बनून काम करत आहेत. शहरातील सुखासीन आयुष्य सोडून बस

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। मैं हूं वैशाली और ब्रेक फ्री चल रहा है। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं आरव और नैना की, इनके प्रेम कहानी की, इनके प्यार की, और भाई किस तरह इन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया। अब ये ब्रेक फ्री से कैसे जुड़ा हुआ है, इसमें ब्रेक फ्री करने की क्या बात थी, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगी। दोस्तों, आरव की जिंदगी में वो दौर भी आया जब काम कम था, पहचान छोटी थी और भविष्य बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में नैना ने चमक दमक नहीं बल्कि उसके इंसान को, उस इंसान को चुना जो चमक पाने के लिए रोज मेहनत कर रहा था। कई बार उसने अपनी इच्छाएं पीछे रखी, कई मौकों पर इंतजार किया और आरव के मुश्किल दिनों को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार किया जितनी सहजता से उसके अच्छे दिन स्वीकार किए। ये त्याग शायद किसी फिल्मी डायलॉग जैसा नहीं था, न कोई बड़ा ऐलान, न कोई कैमरा, बस छोटी छोटी चीजें थी जो कहती थी कि मैं हूं, आई एम देयर। और दोस्तों, प्यार की असली परीक्षा भी तो यही होती है ना, जब सफलता अभी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है, तब भाई जो होता है वो अक्सर बहुत ही सुहाना सा प्यार होता है। नैना ने आरव को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने बस उसे उसके सपने तक पहुंचने के लिए हिम्मत दी। यानी ब्रेक फ्री सिर्फ दुनिया से नहीं, कभी कभी अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज और लोग क्या कहेंगे इससे भी होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि इसमें ब्रेक फ्री करने की क्या और कौन सी बात थी। और भी बातें हैं जो एक एक करके जिनसे ब्रेक फ्री किया आरव और नैना ने, और उनकी कहानी हम जानेंगे, और एक और कपल की हम कहानी यहाँ पर जानेंगे जो क्या आरव और नैना जैसे होंगे। पता चलेगा आपको थोड़ी ही देर में, तो बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो पर है आप।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। दोस्तों, आप सभी को मैं सुनवा रही हूँ आरव और नैना की प्रेम कहानी। किस तरह वो एक दूसरे के साथ बने रहे, टिके रहे, और आरव जब अपने जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर रहा था, तब नैना ने पूरी तरह से उसका साथ दिया, साथ निभाया। यहाँ तक कि जब जब आरव के पास पैसे कम पड़े या बिल्कुल नहीं थे, तो नैना उसके साथ खड़ी हुई। पैसे तो दोस्तों छोटी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है किसी के साथ इमोशनली जुड़े रहना, बने रहना और हमेशा उनको फील कराना, खास करके तब जब वो किसी रिजेक्शन या मायूसी से गुजर रहे हो, कि आप उनके लिए वहां पर मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। पैसे कहीं से आ जाते हैं, कोई लोग होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से पैसे, लेकिन जो एक मनोबल की जरूरत होती है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है, वो हर किसी से उसकी कोई उम्मीद नहीं करता, और जिससे उम्मीद होती है ना, उसी के सपोर्ट करने से या ना करने से फर्क पड़ता है। दोस्तों, अब जरा तुलना में एक ऐसे जोड़े की बात करते हैं, कबीर और रिया की, जिनकी कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जैसे कि कबीर का संघर्ष शुरू हुआ, रिया को लगा कि ये रिश्ता उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसे इंतजार पसंद नहीं था, इनसिक्योरिटीज पसंद नहीं थी, इनस्टेबिलिटी पसंद नहीं थी, बहुत सारी चीजें अनिश्चित थी, तो ये सारी चीजें उसे पसंद नहीं थी, और धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। हो सकता है रिया गलत ना रही हो और उसकी जगह पे कबीर भी हो सकता था। ये बस मैं आपको एक मिसाल दे रही हूं, इसलिए इस तरह से है, वरना लड़का हो या लड़की हो, कोई भी एक हो सकता है कि जो नहीं साथ रहना चाहे। रिया गलत ना रही, क्योंकि हर किसी की अपनी सीमाएं और अपनी जरूरतें होती है, हर किसी का अपना पेशेंस लेवल होता है, सैचुरेशन कैपेसिटी होती है। लेकिन आरव और नैना की कहानी में फर्क इतना था कि उन्होंने कठिन समय को रिश्ते के खिलाफ सबूत नहीं, बल्कि रिश्ते की परीक्षा माना। एक ने संघर्ष किया और दूसरे ने उस संघर्ष को सम्मान दिया, अपना साथ दिया, और दोनों ने मिलकर तय किया कि मंजिल चाहे देर से आए, रास्ता जो है साथ ही में तय करना है। तो दोस्तों, इसी से फर्क पड़ता है ना, क्योंकि साथ ही आपको कई सारे मिल जाएंगे, हमराही हम सफर हर कोई नहीं बन सकता, और अगर आपको वो हमराही वो हम सफर मिल जाए, तो बस आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वैसा हमराही हम सफर फिर नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली पछतावा तो होगा ही होगा। बस ये दो जोड़ों की कहानी मैं आपको सुनवा रही हूं, लेकिन मुद्दा क्या है, बात क्या है, बात ऐसी है कि कई सारी चीजों से खुद को ब्रेक फ्री करना और आजाद रहना, और सही मायने में आजादी, झूठी या खोखली आजादी नहीं, है ना। तो सोचिए उन लोगों को कितना दुख होता होगा जिनका जो पार्टनर है, जिनसे वो प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जब वो नहीं सुन पाता कि वो क्या कह रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ना ही ऊपर वाला सुन रहा है, बड़ी मायूसी होती है, और उस समय वाकई उस हमसफर, उस हमराही की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

107.1 FM रेनबो पर ब्रेक फ्री चल रहा है। दो जोड़ों की कहानी और कैसे एक जोड़े ने ब्रेक फ्री किया जबकि दूसरे ने बस रिश्ते को तोड़ दिया। ये कहानियां दोस्तों बहुत सारी चीजें कहती हैं। क्या क्या कहती है ये एक एक करके आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों ब्रेक फ्री का असली मतलब क्या है? रिश्ता तोड़ देना आजादी नहीं होती। कभी कभी उन धारणाओं से आजाद होना भी जरूरी है जो हमें बताते हैं कि सफल इंसान की ही प्यार के लायक है या फिर रिश्ते के लायक है। देखिए अक्सर शादी के लिए भी जब लड़का या लड़की ढूंढ रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि जो ज़्यादा सफल होता है उसकी ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन कई जगहों पर इस डिमांड की वजह से और उनके कामकाज और सफलता की वजह से फिर कई लोग जो है दहेज भी मांगते हैं। अब दहेज प्रथा तो गलत है, लेकिन यही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी बातें होती है जिनसे हमें आज़ाद होना है। एक तो सफल ही

इंसान के पीछे भागना और उसी समय उसका सफल होना, यानी ये बिल्कुल एक डील की तरह हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये ज़्यादा मायने रखता है कि इंसान कैसा है, क्या वो कोशिशें कर रहा है, क्या वो मेहनत कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सफलता कभी ना कभी देर सवेर उसको मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, आरव जब अपने करियर के लिए लड़ रहा था, तब नैना ने उसके वर्तमान को उसकी संभावित सफलता में नहीं तोला। उसने ये नहीं कहा कि पहले कामयाब हो जाओ फिर साथ रहेंगे, उसने कहा चलो देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। और शायद इसी वजह से जब आरव की मेहनत रंग लाई तो उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं रही, उसमें नैना के इंतजार, समझदारी और उन अनगिनत छोटे सैक्रिफाइसेस की भी हिस्सेदारी थी। क्योंकि किसी के सपने को अपना सपना समझ लेना शायद प्यार की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्तियों में से एक है। और हाँ, प्यार में पार्टनर होना आसान है, लेकिन पार्टनर इन क्राइम नहीं, पार्टनर इन स्ट्रगल होना, ये थोड़ी बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें और भी कुछ बातें जाते जाते आपसे करूंगी, उससे पहले कुछ गाने आपको सुनवाते हुए चलूंगी आगे। तो चलिए, हाले दिल एक दूसरे का जान ही लेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन आरव, नैना, रिया, इन सभी के हाले दिल की बात हम समझ चुके हैं।

तो दोस्तों, ये कहानियां जो आपने सुनी ब्रेक फ्री में, हमें ये नहीं कहती कि हर रिश्ते में हर कीमत पर टिके रहिए, बल्कि ये पूछती है हमसे सवाल कि जब मुश्किल समय आए तो क्या हम डर के कारण भाग रहे हैं या सच में आजाद होकर अपना फैसला ले रहे हैं। आरव और नैना ने अपने रिश्ते को समाज की बनाई हुई सफलता की शर्तों से आजाद किया और एक दूसरे को समय दिया, जगह दी और भरोसा दिया। वहीं कबीर और रिया शायद इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनके लिए उस समय संघर्ष से ज्यादा आसान था रास्ते बदल देना। और ये भी जिंदगी का एक सच है कि हर प्रेम कहानी का अंत साथ होना नहीं होता, लेकिन जो साथ रहते हुए एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने की आजादी दे, वो कहानी दिल में जरूर घर करती है। तो आज अपने दिल से पूछिए कि क्या आप किसी के साथ इसलिए हैं क्योंकि सब कुछ आसान है, या इसलिए हैं क्योंकि मुश्किल होने पर भी उस इंसान के साथ रहना आपको सही लगता है। क्योंकि कभी कभी ब्रेक फ्री होने का मतलब बंधन तोड़ना नहीं, बल्कि डर, अहंकार और दुनिया की राय से आजाद होकर किसी का हाथ थाम लेना भी होता है, कभी किसी का हाथ छोड़ देना ये भी होता है। अगर रिश्ता सुंदर है, बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, तो साथ देना दुनिया के बावजूद ये जरूरी है। और दुनिया चाहे जो भी कह ले, कितना भी परफेक्ट रिश्ता क्यों ना लगे, कितने ही ज्यादा अच्छे पैसे और काम वगैरह क्यों ना हो, लेकिन अगर रिश्ता टॉक्सिक है तो उससे आजाद होना, यही असली मायने में ब्रेक फ्री करना है। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, जिसके बाद होगा म्यूजिक कैफे शुरू। मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। बने रहें, सुनते रहें। और इस आखिरी गाने के साथ आपको कुछ समय के लिए छोड़े जा रही हूं। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 12:02 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधाकर राव नाइक की जयंती पर आज राज्य सरकार जल संरक्षण सप्ताह मना रहा है। इस मौके पर आज मुंबई के वर्ली में महावॉकेथॉन 2026 वॉक फॉर वाटर इस पहल का आयोजन किया गया। इसका मकसद मिट्टी और पानी बचाने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मुख्य समाचारों में आगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य समाचारों के अंत में, भारतीय महिला टीम आज अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पोल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड्स से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 शुरू होगा। नए प्रारूप में पोल ई से शीर्ष दो टीम सेमीफाइनल के लिए

नमस्कार दोस्तों। हाँ भाई, मैं नमस्कार कह रही हूँ आप सभी से, क्योंकि भाई आप सभी जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनसे सलाम नमस्ते करना बाकी जो है। जरा अपनी उम्र को आज छुट्टी दे दीजिए और थोड़ा सा समय में पीछे भी चले जाइए। भाई दिल को सीधे सीधे मैं कहूँ तो 70s और 80s में ले जाइएगा, उस जमाने में जब प्यार करने के लिए डेटिंग ऐप नहीं थे, बस एक साइकिल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और जेब में मुश्किल से 5 रुपए हुआ करते थे। भाई बहुत कहानियां सुनी होंगी आपने तब की, और उससे पहले की भी, अपने दादा दादी नाना नानी से भी बहुत कुछ सुना होगा उस दौर के मोहब्बत के बारे में। भाई दोस्तों, उस दौर के गाने भी कमाल के थे। हीरो को प्यार हुआ तो पूरा मोहल्ला जान जाता था, हीरोइन बालकनी में आई तो बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा बजने लगता और बेचारा प्रेमी 2 घंटे तक पेड़ के पीछे खड़ा गाता ही रहता, जब देखो तब गाता रहता। लेकिन इन गानों की सबसे प्यारी बात थी इनकी शरारत, मस्ती, दोस्ती और दिल में कुछ कर गुजरने का जो जोश दिखाया जाता था ना, वो बहुत ही बेहतरीन और कमाल का था। गायक की आवाज में वो बेफिक्री, म्यूजिक कंपोजर की धुनों में वो शरारत और गायिका की आवाज में वो चुलबुलापन आज भी सीधे दिल पर दस्तक देता है। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जिसमें जवानी भी है, दोस्ती भी, थोड़ा सा पुराना वाला फिल्मी रोमांस है। बस महसूस कीजिए वो जमाना जब दिल जवां हुआ करता था। आजकल भी दिल जवां है लेकिन मायूसी कुछ ज्यादा है गानों में। अब तब की बात ऐसी है कि कई सारे तरह तरह के गाने हमें मिलते थे सुनने के लिए, हर रिश्ते पर, हर मौसम पर और दिल के हर हाल पर। चलिए तो खुशियां मनाते हैं कि दिल जो है मोहब्बत में चूर चूर हो चुका है और आप भी इन गानों में चूर हो जाइए। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिक कैफे।

0: मनोरंजन पूरे परिवार का, कनेक्टिविटी पूरे भारत की, BSNL फाइबर सुपर प्लस OTT 1199 रुपए वाला प्लान अब पाई सिर्फ 1111 में, 200 Mbps, 25 OTT, 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग, सीमित अवधि का ऑफर। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-444 पर कॉल करें। BSNL, हर परिवार का भरोसा।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे 107.1 एफएम रेनबो पर। दोस्तों, गाने सुनकर वाकई ऐसा लगा हो, वाह क्या बात है। कुछ गाने सुनते ही लगता है कि उम्र ने बस कैलेंडर बदला हो।

या सड़कों पर, और भाई पुराने गानों की जवानी सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं थी, इनमें दोस्ती, सपने, सफर, शहर, आजादी और अपनी पहचान बनाने की चाह भी थी, क्योंकि ये नए भारत की बात थी। इसलिए आज जब हम इन्हें सुनते हैं तो सिर्फ गाना नहीं सुनते, अपने अंदर छिपे उस जवान इंसान से भी मिलते हैं जो अब भी कहता है कि चल यार जिंदगी को थोड़ा और खुलकर जीते हैं। और जैसे मैंने कहा, हमारा देश नया नया ही आज़ाद हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, जैसे कि तकरीबन 31 साल हुए होंगे, 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो इसलिए उमंग और तरंगों से ये दिल भरा होता था। और वही जवानी में बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, तो उम्मीदों से भी ये दिल भरा होता था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए और कुछ बेहतरीन गाने आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सुनेंगे 12:30 बजे NCERT उमंग, और NCERT उमंग ये जो है प्रोग्राम, ये चलेगा पूरा आधे घंटे, और जो है आपकी फरमाइशें हिट एंड हॉट की आप भेज सकते हैं उसके बाद, यानी कि अगर आप 12:45 बजे से अपनी फरमाइशें भेजना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कमाल की बात होगी वो, क्योंकि हम आपके गाने फिर सही से प्ले कर पाएंगे, क्योंकि श्रोताओं के बीच में बहुत, मैं मानती हूँ कि इतना प्यार है आप सभी के दिल में हमारे लिए कि बस थोड़ा सा कॉम्पिटिशन सा चलता रहता है, इसीलिए बस यही आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि फर्स्ट सर्विस बेसिस पर आपके गाने हम बिल्कुल प्ले करेंगे, और हमें खुशी होती है कि आपकी दिल की बातें साझा करें, आपके गाने प्ले करें, पर यही गुजारिश है कि 1 बजने में थोड़ा समय बाकी हो तभी आप मैसेजेस करें और 1 बजे के बाद कॉल करें। तो बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गाँव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए
2: जी।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग
2: जी।
1: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
1: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
1: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की
1: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
1: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया
2: जी।
1: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियां खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
1: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है
2: जी।
1: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
1: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा
2: जी।
1: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी
2: जी।
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था
2: जी।
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते
2: जी।
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो
2: जी,
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
2: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
2: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
2: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
2: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
1: आप हैं।
2: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष

0: खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार।

0: तो झुमके, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमके, क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
6: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
6: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक है।
1: बताओ।
6: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
5: यदि बंद ना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
6: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास
0: बहुत
3: बड़ी।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
3: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरे मन

0: तो
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों अब तुम्हारी बारी है।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई और 500

0: रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
1: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
0: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
2: जी आदाब, बजा लाता हूं
3: जनाब, मोहानी की खिदमत में।
1: अरे आप, आदाबर्स आइए आइए, तशरीफ रखिए।
3: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।
1: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
3: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
1: जी बस।
3: जी,
0: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था, वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
1: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
3: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
2: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
2: मोहानी साहब
1: जी,
2: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
1: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
2: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
2: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
2: या खुदा,
1: नौश फरमाइए मियां,
2: लाइए
1: खाइए।
4: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
5: इरशाद ग्रामी
1: है, मश्के सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी।
6: वाह क्या बात है, मश्के सुखन जारी
1: चक्की की मशक्कत भी।
6: वाह,
1: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
6: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। क्या बात, क्या
0: बात। बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।

0: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
1: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
0: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
2: जी नहीं नहीं नहीं,
1: मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
1: नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
0: क्या?
2: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
1: अरे मोहानी साहब,
2: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
0: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
2: नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे।
1: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
2: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
3: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहां भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
0: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
2: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
0: आपने कुछ खाया ही नहीं।
2: कुछ नहीं खाया? यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
0: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
2: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
0: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
2: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, शब्बा खैर।
2: शब्बा खैर।
0: बला की ठंड है,
2: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
3: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
2: मथुरा कि नगर है आशिकी का,

0: दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयात जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
1: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 एफएम रेनबो। आप हमें एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुन रहे हैं। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आपका एफएम रेनबो, आपकी प्लेलिस्ट और आप ही की साझा की हुई बातें होंगी हिट एंड हॉट में 107.1 एफएम रेनबो पर। जो श्रोता मित्र नहीं जानते उनके लिए साझा कर रही हूं हमारे नंबर्स। व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करने के लिए नंबर है 8657661071 और फोन पर कॉल करके बातें करने के लिए नंबर्स हैं 4515414132 4515414133। मैं हूं वैशाली और आपके साथ इस घंटे बनी रहूंगी, उसके बाद मुझे लेनी होगी आपसे विदा। लेकिन जाने से पहले भाई जितने हो सके उतने रिक्वेस्ट प्ले करने की मेरी बिल्कुल दिली तमन्ना है। हमें मैसेज आया है हितेंद्र दास जी का असम से, अनिल कांबड़े जी का मोहम्मद फरमान और उनके पूरे परिवार का उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र परमार जी का, डॉक्टर अंजू का अंधेरी से और पंकज मोहर जी का अमरावती से। और इन्होंने कहा है कि किसी भी गानों में इनको शामिल कर ले। आकांक्षा मनोज सिन्हा भी हमें अहमदाबाद से लिखती हैं। थोड़ा मैं इनका समझ नहीं पाई हूँ मैसेज, लेकिन बिल्कुल कोशिश रहेगी कि गाना इनका प्ले करूँ। और मुझे मैसेज आया है विजय महोबिया जी से, इनका पूरे परिवार समेत खंडवा मध्य प्रदेश से, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है जो सबसे पहले मैं प्ले करने वाली हूँ, और ये है प्रेम बंधन का गीत। साथ ही साथ यशवंत आड़मुठे जी ने भी फरमाइश भेजी है, शुभदा जी भी भेजते एक गाना, क्योंकि लिखती हैं कि सीनियर सिटीजन डे है तो एक गाना उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया हुआ है। विजेंद्र घाटोल जी, फिरोज सिकनपुरिया जी, प्रकाश शिंदे जी और प्रमोद चिंचोलकर जी, इन्होंने भी हमें मैसेज किया हुआ है। अनिल कांबड़े जी हिंगोली से हमें नमस्ते भेजते हैं, और भी हमारे कई श्रोता हैं जो बने हुए हैं। तो

सबसे पहले विजय महोबिया जी का गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, ये सभी बने हुए हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। और प्रेम बंधन का एक गीत मैं प्ले करने वाली हूँ। इसके बाद मैं यशवंत जी की फरमाइश प्ले करने वाली हूँ, मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी ना करना। और उसके बाद तुम बेशर्म हो, ये गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, जो शुभदा जी की फरमाइश है। और उसके बाद और भी गाने आएंगे, तो सभी से दरखास्त है कि बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, हिट एंड हॉट चल रहा है और आपकी फरमाइशें प्ले कर रही हूं मैं। और शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए, बने रहने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। तो मुझे प्राची शिंदे इनका मैसेज आया है और खुशी की बात है, बहुत जल्द ये जो है इनका क्लास जो है शुरू होने वाला है और मेरे ख्याल से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ वो करने वाली है, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने वाली है। और इन्होंने काफ़ी सारी बातें लिख भेजी है। सबसे पहली बात तो भूमिका चावला, इनका जन्मदिवस है आज, यानी एक्ट्रेस भूमिका चावला, और इन्हें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रही हैं। साथ ही साथ बोल राधा बोल के जो है कितने वर्ष पूरे हुए ऐसे भेजा है इन्होंने, यानी 1992 में ये रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म 34 साल हो गए हैं पूरे, तो इस फिल्म का कोई गाना सुनना चाहती हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने भेजी है और लिखा है कि आज सिंगर वैशाली माड़े, कनिका कपूर, संगीतकार अजय गोगावले, इन सभी का

0: जन्मदिन है और इसलिए ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। ये महान हस्तियां हैं वाकई, और इनके जन्मदिन पर बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइशों के मुताबिक गाने हम प्ले करें यहाँ। मुझे फिरोज सिकंदपुरिया, इनका भी मैसेज आया था और बहुत सारी बातें इन्होंने भी लिख भेजी हैं। इन्होंने कहा कि कहानियाँ उन्हें बहुत अच्छी लगी और कहानियों की बात ये लिखते हैं कि भाई जो ऐसी बातें होती है ना, वो पता होना और उसके ऊपर एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद। और मैं वही देख रही हूँ कि प्राची ने भी हमें बहुत सारी बातें लिख भेजी है, तो क्या क्या मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ ये देखने की कोशिश कर रही हूँ। लिखा है, पढ़ाई या काम के दौरान हल्का संगीत सुनने से फोकस और कार्यक्षमता बढ़ जाती है, और त्योहारों, शादियों और मेलों में संगीत और लोकगीत बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारी चीज़ें लिखती हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया है और मैं कभी कभी संगीत सुनती हूँ, ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर देती हूँ। मेरे बाबा ने कहा है कि मेरी लाडली बिटिया बाबा का यानी पिताजी का नाम रोशन करेगी, बस अब मेरे बाबा के इन शब्दों को साबित करके दिखाना है। वाह क्या बात है। तो चलिए आप सभी के लिए दो गाने बैक टू बैक, पहले फिरोज जी की फरमाइश, उसके बाद प्रकाश जी की फरमाइश।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।

आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट जो जारी है 107.1 FM रेनबो पर। आप सभी की फरमाइशें बहुत जल्द प्ले होने वाली हैं, सभी की नहीं कहूँगी, चार गाने अभी प्ले होंगे। जैसे कि आप सभी श्रोता मित्र जानते हैं कि इस घंटे हिट एंड हॉट में 8 ही गाने प्ले हो पाते हैं, तो चार गाने हम आपके लिए प्ले कर चुके हैं और चार गाने प्ले होने वाले हैं। तो सबसे पहला गीत तू तू तू तू तू तारा, जो है प्राची शिंदे, इनकी फरमाइश, और पंकज मोहन जी ने भी ये कहा कि इन्हें भी ऐसे किसी गाने में शामिल किया जा सकता है। इनका नाम धन्यवाद, और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, अमरावती से मैसेज करते हैं, और इनको जो है प्रेम कहानी जो मैंने बताई वो बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ लिखते 70s 80s के गाने बहुत पसंद करते हैं। संजय दर्शन जी का भी हमें कॉल आया था और मैसेज किया था उन्होंने, और कॉल भी किया था, और उन्होंने भी गाने की फरमाइश की, लेकिन तब तक 8 गाने हमारे पास पूरे हो चुके थे। तो भाई बात ऐसी है कि उन्होंने भी कहा कि FM रेनबो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे, और जो हैं वो हमारे बहुत ही पुराने श्रोताओं में से एक है, जो 90s की शुरुआत से FM रेनबो सुनते आए हैं, जब FM मेट्रो नाम हुआ करता था, और भी एक अलग नाम हुआ करता था एक जमाने में FM रेनबो का, तो तब से ये नियमित श्रोता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी भी सुनते हैं FM रेनबो और बने हुए हैं और रेडियो से इतना प्यार करते हैं। तो पंकज मोहर जी ने भी भूमिका चावला जी को जन्मदिन की शुभकामना दी हैं, और जो है ये बहुत सारी बातें लिखते रहते हैं, धन्यवाद, कॉल भी करते हैं, और हमारे कई सारे श्रोताओं के मैसेजेस और कॉल्स हमें आए हैं। तो दीपा पालकर जी की भी फरमाइश है, और मैसेजेस में राम प्रजापति जी, विलास टेमकर जी के मैसेजेस हैं। विलास टेमकर जी ने तो बहुत अच्छी हमें कविता भी करके भेजी है मराठी में, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अब मैं जो है गानों की तरफ रुख करते हुए तू तू तू तू तू तारा, जो प्राची शिंदे की फरमाइश है, ये प्ले करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आ रहा हूँ, ये गाना प्ले होगा, देखने की कोशिश कर रही हूँ ये किन की फरमाइश है, बहुत जल्द मैं आप सभी से साझा करूंगी ये किन की फरमाइश है। तो बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे 107.1 FM रेनबो हिट एंड नॉट चल रहा है और ये जो गाना था मैं आ रहा हूँ वापस, ये जो है विजेंद्र घाटोल जी की फरमाइश थी और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे हमारे जो श्रोता हैं वो नाराज़ भी हैं कि उनका गाना नहीं प्ले हो रहा है, लेकिन नाराज़गी आपकी जायज़ है पर समय की कमी है हमारे पास तो 8 ही गाने प्ले हो पाते हैं। तो अभी जो है मैं प्ले करने वाली हूँ दिग्दर्शन और कविता इनकी फरमाइश सौतन फिल्म का गाना शायद मेरी शादी का ख्याल, और उसके बाद दीपा पालकर इनकी फरमाइश वो है गाना सोना नहीं ना सही। ये दो गाने मैं प्ले करूँगी बैक टू बैक और फिर अगर गुंजाइश रही तो प्रमोद चिंचोलकर जी का जो है सॉन्ग इन्होंने भेजा है ये सुनना चाहते हैं। जो गाना वो है झूठ बोले कौवा काटे, तो कोशिश रहेगी कि ये प्ले हो सके, बाकी हमारे श्रोताओं के गाने प्ले कर पाना मुश्किल होगा। अब यहाँ पर दीपा पालकर जी ने भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें लिख भेजी हैं कि कहानी अच्छी लगी इन्हें और कहती हैं कि कहानी के अनुसार सचमुच कठिनाइयों में साथीदार को मानसिक रूप से जो है आपके साथ खड़ा रहना चाहिए और सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ये तो ज़रूरी है ही लेकिन ये काफ़ी नहीं होता और सपनों की पूर्तता के लिए ब्रेक फ्री होकर कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने लिखा है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और भी हमारे जो श्रोता है ये सभी बने हुए हैं, धन्यवाद और मैसेजेस भी आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल सभी का नाम हमारे तमाम श्रोताओं के साथ साझा करूंगी बहुत जल्द। ये दो गाने बैक टू बैक सुन लीजिएगा, बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे 107.1 FM रेनबो हिट एंड हॉट, बस खत्म होने को है और आप सभी के मैसेजेस के लिए, कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मैसेजेस आए हैं सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश के, अंकित, अमित भगत, राकेश माथुर और अभिजीत गवहानकर, आकांक्षा मनोज सिन्हा जी, फिर काजल कक्कड़ जी चेंबूर से, बड़े दिनों बाद आपका मैसेज देखा है काजल जी, धन्यवाद के आपने मैसेज किया और जुड़ गई हैं। और संजय पाटिल जी का भी हमें मैसेज आया है, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, फिर संदीप कुमार जी, अजय साखरे इंदौर से, संदीप अजमेरे यवतमाल से, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, राजेंद्र परमार जी का नाम शायद मैंने लिया था कि उन्होंने मैसेज किया और बहुत पसंद किया गानों को, और हीरामणि वर्मा जी हमसे जुड़े हैं, गुरमीत सिंह, मीता सिंह जुड़े हैं, मिंटू थॉमस और पिंकी लवली आरती जुड़े हैं, ओमकार काटकर रजनीकांत पाटिल वाडवन से, डिकैस्ट्रो जॉन भी बने हुए हैं, अरज जो है ये हमसे, आर्यन राज ये हमसे जुड़े हुए हैं, फिर स्वर्ण सिंह भी बने हुए हैं, मेहर अरोड़ा श्रीगंगानगर राजस्थान से, महेश बोरा जी राजस्थान से, ये सभी तमाम श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं। पेठे वसई से बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष बी पाटिल भी बाबा दादर से, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को छोड़े जा रही हूँ एक आखिरी गीत के साथ, यूं ही अपना साथ देते रहिए अपने FM रेनबो को, और मैं अगले यानी पखवाड़े में आपसे मिलूंगी। अभी के लिए तो बस मेरा काम खत्म हो चुका है, बहुत जल्द मिलेंगे, कौन से दिन बस थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा और इंतजार रहेगा मुझे भी, बने रहें सुनते रहें।

0: 14.8 gigawatts of renewable energy capacities, helping save around 806 million liters of diesel every year. Department of Pharmaceuticals Secretary Manoj Joshi today urged the medical device industry to provide greater input in shaping India's regulatory framework. Speaking at the CII Global MedTech Summit in New Delhi, Mr. Joshi said the industry's participation in regulatory discussions was currently limited and stressed the need for a stronger industry-government dialogue. Mr. Joshi also highlighted the need for stronger testing of both medical device designs and finished products.
1: In medical devices sector, the two aspects are important. One is ecosystem for manufacturing. Government is working on that with the industry to provide support to industry and facilitating them. Another aspect is the regulatory part. The focus has to be what people are making substandard products, to stop that, to facilitate them for upgrading.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has emphasized India's commitment to deepening economic partnership with Singapore and across Asia while fostering stronger business-to-business collaboration. Addressing the non-profit business school INSEAD alumni and students, Singaporean entrepreneurs and Indian businesses at the India-Singapore Business Forum, the minister highlighted India's strong growth trajectory, investment opportunities, and the government's efforts under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to enhance the ease of doing business. Mr. Goyal also met Singapore's Minister of State for Foreign Affairs and Trade and Industry, Kan Xiao Huang, and other dignitaries at the APEDA Fairprice Roadshow come in-store promotion being organized for expansion of exports of diverse range of India's agricultural and processed food products. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi rejected the economic threats made against his country, saying that such failed policies will stir more hostility among Iranians and bring more failures. Araghchi's comments came after Trump threatened crushing economic measures against Iran. In a social media post, Araghchi maintained that the threats aim to divert the attention of the American public from domestic financial problems, saying that U.S. economic terrorism threatens the global economy and the national sovereignty of countries around the world. Earlier, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent yesterday said that Iran will face the greatest coordinated economic isolation in the history of the world. Pakistan's former Prime Minister Imran Khan was shifted back to Adiyala Jail in Rawalpindi this morning after undergoing a medical examination at a private hospital in Islamabad. Khan was moved to Shifa International Hospital after midnight in compliance with the Supreme Court's order on August 18th, directing that he be transferred there within 2 days after a medical report submitted before it said he was suffering from level 3 plus anxiety. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh for today, the IMD forecast. Heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, Uttarakhand and West Uttar Pradesh till tomorrow. Heavy rain has disrupted life across eastern Madhya Pradesh with several rivers in spate and flood-like conditions in many areas, a report.
2: A weather system active over eastern Madhya Pradesh has caused heavy rain in several districts with flood-like conditions in many areas. Rivers and streams are in spate in Dindori, Panna, Rewa, Satna and Chhatarpur. Several rivers including Mandakini and Narmada are flowing above the danger mark. The weather department has issued a heavy rain alert for 16 districts including Niwadi, Tikamgarh and Chhatarpur today. These areas may receive 4 to 8 inches of rain in the next 24 hours. Rainfall is likely to gradually move towards central and western Madhya Pradesh over the next 2 to 3 days. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
0: In badminton, India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have stormed into the women's double semi-finals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian duo displayed remarkable grit and fighting spirit, coming from a game down to overcome fourth seeds Chia Yi Fan and Zhang Shu Xian of China, 16-21, 21-15, 21-13. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands, today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces three-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
4: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
3: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
5: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा

0: देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में

0: विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
1: Over the past decade, BRICS has emerged.
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
1: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
3: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जीएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
4: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए

0: आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
1: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप

में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हिरोइन अभी तू
1: सत्याना।
2: रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना, रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना, कौन हीरोइन तुझला कर लगा अक्का।
3: अब असं काय करता, अजून एक चांस द्या ना।

0: अरे बाप रे।
1: लटपट लटपट लटपट लटपट तेरी चाल है मोटी नखरेली, बात तू करती मतवाली, नारिका नारिका अगन

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलो हर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार सिंह लेकर पेश हूं कार्यक्रम लव यू जिंदगी। और कार्यक्रम का आगाज हमने किया अरिजीत सिंह की आवाज में सयोनी के साथ, ज्योति नूरान ने दिया था उनका साथ, और उसके बाद अगले गीत भी बहुत धुआंधार होने वाले हैं। अगला गीत जो है मोहित चौहान की आवाज़ में इलाही, उसके बाद अदनान सामी की आवाज़ में उड़ी उड़ी, और उसके बाद आशा जी की आवाज़ में खल्लास मैं आपको सुनाऊंगा, कंपनी फिल्म का गाना, और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने और बातें हमारी आपकी। और आज की बात सभी लोगों की एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, किसी के लिए खुशी है, किसी के लिए प्रॉब्लम, लेकिन एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है धीरे धीरे, हौले हौले सारी बातें एक के बाद एक। सबसे पहले मोहित चौहान।

गानों में खास बात ये होती है दोस्तों, जिस एरा का गीत है, जिस साल का गाना प्ले करते हैं, उस साल से संबंधित चीज़ें बहुत सारी आपको याद आती हैं। उस साल आप क्या कर रहे थे, खास तौर से आप अपने आप से रिलेट करते हो। 10 साल पहले का गीत लगाया हमने, अगर फिल्म 10 साल पहले रिलीज हुई है, 10 साल पहले आपके हालात क्या थे, उस हालात में आप क्या करते थे, कोई स्कूल था, कोई कॉलेज में था, कोई काम करता था, कोई शुरुआती पायदान पर था, बहुत सारी चीज़ें आप यकीन मानिए बहुत सारे गीतों के साथ आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे कीमती उतना अहम ज़िंदगी के मुद्दे और किस्से जुड़े हुए होते हैं। और धीरे धीरे जब आप अकेले चल रहे होते हैं, बहुत सारे गानों के जरिए आप सुनते हैं, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, वो बात सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं कि उस गाने का संबंध उस चीज़ से, किस मकाम से और किस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं, 5:19 हो चुके हैं। अगला गीत मैं लगाने जा रहा हूं, और उसके पहले मैंने सोचा कि आज लगातार जब फ्राइडे इवनिंग हो ही चुकी है और बहुत से लोग इस चक्कर में थे कि भाई आज शुक्रवार की शाम को कितनी जल्दी निकला जाए, दोस्तों से कैचअप किया जाए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं धमाल किया जाए, क्योंकि बहुत मिन्नतों के बाद ये फ्राइडे इवनिंग आती है। लेकिन मैं आज एक कॉरपोरेट वर्ल्ड की उस सच्चाई को भी, कहते हैं ना कि आज तार तार कर दूंगा, सब हमने खोल कर रख दूंगा, कि होता क्या ना, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर देना और वेलबींग की बातें करना, मेंटल हेल्थ की बातें करना, जो सबसे ज़्यादा ये बातें करते ना, वो इन दोनों चीज़ों की बैंड भी सबसे ज़्यादा वही बजाते। कैसे कैसे, गानों के साथ साथ बताते जाऊँगा। और जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़े लोग सुनते रहेंगे ना, एक भी इंसान बोल नहीं पाएगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। सुमिति चौहान, सुखविंदर और नच्ची के चकू की आवाज़ में बीड़ी जलेले, फिल्म का नाम ओंकारा, 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

9 घंटे की शिफ्ट टेक्निकली होती है, लेकिन वो तो कहते हैं भाई अगर 10 का 10:15 हो गए तो भैया 3 अगर 15 मिनट के निशान लग गए तो भैया एक छुट्टी मान लो। लेकिन जो 7 बजे वाली समय सीमा है ना, वो जिस दिन हम 9 बजे छूट जाते तो सोचते हैं बहुत लकी हैं, सिर्फ 2 घंटे रुकना पड़ा, 3 घंटे रुकना पड़ा, और नॉर्मल हो चुका है। क्या करते हैं छलावा, ये सैटरडे ऑफ देते हैं, सैटरडे ऑफ देते हैं 9 घंटे की छुट्टी, लेकिन बाकी 5 दिन 3 घंटे के हिसाब से 15 घंटा काम करवा लेते हैं, और सैटरडे छुट्टी, और सैटरडे छुट्टी यानी कि सिर्फ ऑफिस नहीं आना है, मेल पे तो शुरू रहना ही है आपको, जवाब तो देना ही है, बहुत कुछ करना ही करना है। तो ये जो झूठा छलावा जो छोटे बच्चे के हाथ में झुंझुना थमा देते हैं ना, कुछ वही काम कॉर्पोरेट वाले भी करते हैं, लेकिन चूंकि भैया वो एक स्टाइल हो चुका है, नियम हो चुका है, तो क्या कहें और किससे कहें। तो ये हालात है, और इस हालात को ना कोई बोलने वाला ना कोई कहने वाला है। मैं भी सोचता हूँ कि इतनी सारी हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया में आ जाती है, हर जगह आती है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत की सारी बातें क्यों नहीं आती। फिर लगता है कि हर इंसान जुड़ा हुआ है, सोचते हैं यार अपना तो मैं नाम ले नहीं सकता, मुझे वहाँ नौकरी करनी है, बॉस भी पढ़ रहा है तो मेरी तो बैंड बन सकती है, वो अगले को बोलता है, अगला बोलता है मैं भी क्यों लिखूं। इस तरह से हर इंसान एकदम उसमें घुसा पड़ा है, जाकर भी कुछ कर नहीं पाता, और ये रोज के मेंटल टॉर्चर। कहने का मतलब वो जो 2 वर्ड सीख लिए ना, मेंटल वेलबींग की बड़ी चिंता रहती है, और ऐसी बहुत सारी कहते हैं ना कि वोकैबुलरी अच्छी कर लेते हैं लेकिन परवाह बिल्कुल नहीं होती है। आपके हालात कुछ भी हो भाई साहब, मेल पे पढ़ लेना और जवाब जरूर दे देना। तुम अगर ऊपर भी जा रहे हो ना तो थोड़ा पॉज ले लेना, पहले एक काम करना फिर ऊपर जाना। तो दोस्तों ये हालात हो गए, इनके ऊपर अगर चर्चा करने जाए उनके एक एक बातों को लेकर, तो भाई मेरे पास 4-5 शो कम पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, हर 15 मिनट आधे घंटे पे कोई ना कोई एक चौका छक्का कॉर्पोरेट जगत का मार ही दूंगा। बाकी जो सुनने वाले हैं, जो ऐसा जुल्म सहते हैं, वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। जो जुल्म करने वाले भी हैं वो अंदर ही अंदर से आंख दिखा रहे होंगे कि क्यों पोल खोल रहा है, बोल रहा है भैया नौकरी नहीं कर रहा वहां पर किसी की, तो बिंदास बोल सकता हूं इतना लग्जरी लिबर्टी तो है मेरे पास, और भी बहुत सारी लग्जरीज है जिंदगी की जो मैं करता हूं, जो आपको बताऊंगा धीरे धीरे वो क्या है। आज के जमाने की लग्जरीज जो बाकी लोगों को सिर्फ सुनने में आती लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्राइडे शाम होते होते उनकी हालत हो जाती खल्लास।

5:40 और 41 सेकंड हो चुके। जो बात मैं शुरुआत में कहने जा रहा था वो ये बात है कि जमाना है नोटिफिकेशंस का। आप जिस किसी फील्ड में हो, अगर आपके फोन में नोटिफिकेशन आया है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपको उसको खोलना है, उसे देखना है, और आपके लिए खासतौर से भेजा गया है। फोन आपका है, चाहे न्यूज के ऊपर आए, सोशल मीडिया पे आए, कोई वर्ल्ड न्यूज से आए, कहीं से भी आए, आपको लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको अटेंड करना बहुत जरूरी है। इतने ज्यादा जिंदगी में बहुत सारे कहते हैं ना कि अटेंशन स्पैन आपका कम करने के लिए इतने ज्यादा यहाँ वहाँ से छलावे आएंगे, यहाँ वहाँ से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और आप हर 5 सेकंड 10 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अगर आपने कोई चीज कॉन्सेंट्रेट करके करने की ठानी है फिर तो आप कर चुके। अनसर अंटिल आपका अपने ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है, आप डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है, तो ये हो सकता है। अदरवाइज जैसे कि मैं एक मजाक में कहता हूँ ना कि आज का युवा जाग चुका है, सुबह ब्रश करेगा और 2 डेटा GB खाली कर देगा, यानी कि बिना मतलब के ऊल जुलूल वाली चीज़ें आप लगातार उसमें अपने आपको कंज्यूम करवा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपके पास बहुत सारा समय है, खुशकिस्मत इंसान है आप, लेकिन इस तेज़ रफ्तार जिंदगी में समय अपनों के लिए, दोस्तों के लिए, खुद के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी सेहत के लिए निकालना मुश्किल हो जाता, तो ये सारा समय मिलता कहाँ से? और अगर आपको सच में समय मिल रहा है तो जिंदगी भर आप खाली रहने वाले हैं, ये मान के चलिए। मैं किसी को डिमीन करना नहीं चाहता, लेकिन आप अपने आप से कितने सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं ये बहुत कुछ कहता है। और भी बहुत सारी बातें, एक ही बार में इतना डोज दे दूंगा ठीक नहीं लगता है। अगला गीत आपको मैं सुनवा रहा हूँ, सुनिधि चौहान की आवाज़ में, फिल्म का नाम मर्डर 2।

पांच बजकर 52 मिनट और 12 सेकंड हो चुके हैं। मारिया मारिया पार्टनर फिल्म का दोस्तों एक गाना था। इस फिल्म के जरिए गोविंदा ने दोबारा से एक तरह से एंटर किया था सलमान खान के साथ, और उस दौर की बात भी कुछ और थी। और जब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ चाहे नोटिफिकेशंस की इस जमाने की, और खास तौर से लोगों ने फिर एकदम होलसेल में कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए हैं कि आपने वो बात कही जो हम चाह के भी कह नहीं पाते हैं, हम ऑलरेडी कामकाजी लोग हैं तो इसलिए बस अपने काम में इतने घुसे रहते हैं कि अपने उतना सर ऊपर करके देखने का मौका ही नहीं मिलता है। वेलबींग तो बहुत दूर की बात है, हम अपने नियर एंड डियर वंस तक को मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, साथ में लंच और डिनर लेना तो बहुत किसी गुजरे जमाने की बात होगी। सोचिए आप किस हाल में रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, लाखों की तनख्वाह पा रहे हैं लेकिन एक मील साथ में लेना आपके लिए बहुत रेयर चीज हो गया है। सोचिए किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और फाइनल इसका आउटकम क्या होगा। करेंगे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन बात अभी शुरू ही की थी कि कार्यक्रम का पहला घंटा यानी लव यू जिंदगी का समाप्त होते जा रहा है। लव यू जिंदगी जब हम कह रहे हैं तो मैं बार बार इन बातों को इसलिए निकाल रहा था कि अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्यार करें और क्यों हमारा काम प्रायोरिटी बनता है, हम खुद नहीं यहाँ के कल्चर के हिसाब से इसके बारे में बातें करेंगे अंदाजे बयां में। लेकिन उसके पहले जाते थे आपको मैं सुनवाता हूँ एक और गीत आश किंग शिल्पा राव शेखर विजयानी की आवाज में मेहरबान, लेकिन उसके पहले केके और पलक मुशाल की आवाज में लापता। इस गाने को सुनाऊंगा बाद में, सबसे पहले मेहरबान। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ अपने साथी शिव कुमार सिंह के साथ होता है। मोर बजाना लेस पकाना सुनाते हैं गाने पे गाना। आप लोग सुन रहे हैं लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 6:15:42 हो चुके हैं। कार्यक्रम का वक्त हो चला है अंदाजे बयां का। गजलें आप सुनते थे, कवालियां सुनते थे, आज मैं कुछ अंदाजे बयां का अंदाज और अलग करने वाला हूँ। खासतौर से ठहरा वाले गाने मैं उनको शामिल करूंगा, सॉफ्ट रोमांटिक गीत भी होंगे और थोड़े पेंसिव मूड वाले गाने भी होंगे, लेकिन जो है जिसका अंदाज बहुत अलग होगा, जो रूटीन तेज तरार गानों से काफ़ी अलग होंगे और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, और खास तौर से उनकी मेलोडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके मैं इसके शुरुआत करता हूँ तनु वेट्समनु के गीत के साथ। मोहित चौहान और उज्जैनी की आवाज़ में गाना था यूं ही, जो अक्सर कम प्ले होता है, लेकिन मैं चाहूँगा इस गाने को आप सुनिएगा। फिर अरिजीत सिंह की आवाज़ में है जानिसार केदारनाथ फिल्म का, उस्ताद राशिद अली खान साहब की आवाज़ में आओगे जब तुम फिल्म जब भी मेट का, और उस्ताद सुल्तान खान साहब की आवाज़ में भी है अलबेला सजन हम दिल दे चुके सनम का। तो लगभग इतने ही सारे गीतों को मैं शामिल करूंगा। बातें हुई होंगी जो हम कर रहे थे, और बहुत से लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं मैसेजेस के जरिए, उनकी बातों को भी मैं सभी लोगों तक ले आऊंगा। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ अपने साथी शिव के साथ आप बने रहिए, FM रेनबो चैनल ही।

जब मैंने आज शुरुआत की थी नोटिफिकेशन की बात वाली, कि हर नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है, लेकिन आपका आपको लगता है कि भाई आपका जन्मसिद्ध हक और फर्ज बनता है कि आपको हर एक चीज चेक करनी, पूरी देश दुनिया की खबर आपको जानना बहुत जरूरी, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, क्या हो रहा है थोड़ा बाद में सोच सकते हैं, आपके बिजनेस के बारे में आपके काम कर रहे हैं बाद में सोच सकते हैं, लेकिन दुनियादारी में क्या हो रही है वो पहले जानना है। हमें कॉन्स्टेंटली पता ना, एक अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना चाहते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो भी मोबाइल चला रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि लिफ्ट में जा रहे हैं, फ्लोर का दरवाज़ा खुल के बाहर आ जाते हैं, फिर रियलाइज़ करते हैं कि जहाँ जाना चाहते हैं वो गलत फ्लोर पे, फिर से घुस जाते हैं क्योंकि वो फ़ोन में ऑक्यूपाइड होते हैं। लिफ्ट में आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड रहना है, लेकिन उस दौरान भी आप ऑक्यूपाइड रहना चाहते हैं। दाएं बाएं कौन आ रहा है जा रहा है किसे कोई मतलब नहीं है, लोगों ने एक दूसरे को स्माइल करना तक छोड़ दिया है, लिफ्ट में घुस जाते हैं फोन में रह जाते हैं, किसी को ने देखना नहीं है अपने फोन के सिवा, दुनिया उसी में सिमट चुकी है। जब आपको किसी को नहीं देखना तो आपको कौन देखेगा, ये भूल जाते हैं लोग। तो जो करोगे वो पाओगे, और वो ये हालात हो चुके हैं, कोई किसी को देखता नहीं, सबको अपने अपने हिसाब से चलना है। तो फिर भाई आज के ज़माने में जो भी वर्ड्स आ ही रहे हैं, डिप्रेशन, विप्रेशन, मेंटल हेल्थ तो होगा ही होगा। बाकी रही बात कॉर्पोरेट कल्चर की, ठीक है अभी अगले एक डेढ़ घंटे में बहुत कुछ है बताने के लिए उनके बारे में, फिलहाल धीरे धीरे डोज के साथ जानी सार गाने के बाद आपको सुनाता हूँ श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म हमारी अधूरी कहानी का ये गीत, हंसी फीमेल वर्जन में।

गजब की कशिश है उस्ताद राशिद खान साहब की आवाज़ में। इसके बाद जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ समय बाद आपको उस्ताद सुल्तान खान साहब की आवाज़ में गीत सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में जिंदगी कुछ तो बता और तोशी रैना और रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ में कबीरा। और एक और खास बात दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में छोटी बड़ी बातें होती बहुत सारी। एक बंदा जो नया नया लगा था तो वहाँ जब अलग अलग अकाउंट होते हैं कि मान लीजिए कोई 10 लोगों की टीम एक पर्टिकुलर क्लाइंट को देख रही है तो उस टीम में भी नीचे से बढ़कर ऊपर तक की प्रोटोकॉल में अलग अलग लोग होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन जब जाहिर है सबकी पोजीशन अलग है, सबकी तनख्वाह अलग है, कभी कोई टारगेट अचीव कर लिया और साथ में पार्टी करना है और जो सीनियर बॉस होते हैं कि चलो आज सब ने बहुत अच्छा काम किया, वी डिजर्व अ पार्टी, और सभी लोग चले जाते हैं बॉस ने बोला है। और बहुत कम बार भी होता है कि ठीक है बॉस ने इनिशिएटिव लिया है तो बॉस चाहे अपनी तरफ से या कंपनी की तरफ से सबको ट्रीट देता है, एक अलग बात है। लेकिन 90% गिवन होता है कि सब लोग जाएंगे, सब लोग साथ में खाएंगे पिएंगे और सभी लोग इक्वली बिल शेयर करेंगे। लेकिन उसी जगह पर किसी की तनख्वाह 30,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 1,00,000 है, किसी की 2,00,000, किसी की 3,00,000, और जब बिल आता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, शेयर हो जाता है। तो जाहिर है जो बंदा 2,00,000 कमा रहा है, जो बंदा 30,000 कमा रहा है, उन सबका एक ताकत अलग है खर्च करने की, लेकिन इन सब बातों पे कभी गौर नहीं किया जाता। और बहुत बार मतलब प्रेशर में आके सभी लोग, जो आदमी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं भी कर सकता है वो अभी वहाँ घुस जाता है, वरना लोग क्या कहेंगे, क्या एक प्रेशर अलग सा बन ही जाता है। ऐसे ऐसे जब हालात भी आते हैं तो जो सीनियर होता है उसका काम होता है जूनियर को संभालना, चाहे फाइनेंशियली संभाले या कुछ ऐसे हालात करके उसको भी कंफर्ट जोन फील हो कि भाई ठीक है इस जगह पे वो नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन आया तो उस हिसाब से बंटवारा हो ताकि किसी ऊपर लोड उतना ना आए। हर इंसान की कैपेसिटी के हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन उस धुन में बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती है और आपको एक्सपेक्टेड होता है कि यार तुम टीम स्पिरिट में तुम यार अकेले हो जाते हो, साथ में नहीं आते, उसे फील करा दिया जाता है। लेकिन कहे तो किससे कहे, तो अब जब लोग सुनेंगे कहेंगे नहीं यार 90% ऐसा नहीं होता है, लोग एक ही लेवल के लोग साथ में पार्टी करते जाते आते वो आगे जाके होता है। लेकिन कभी कभी जब ये भी होता है, ये भी करना होता है क्योंकि भाई उससे काम लेना है तो उसको भी फील कराना बहुत ज़रूरी कि भाई तुझे भी मैं बराबरी का समझ

सकता हूँ, हालांकि अंदर से भले ना समझते हो। तो ये बहुत सारी बातें आती हैं, कॉर्पोरेट जगत की बातें हैं, हर जगह होता है, चलता है, रहता है। लेकिन इन बातों को सुन के, समझ के, किसी ने भी अगर सेंसिटिविटी से काम किया तो अच्छी बात है। और उसके बाद एक और खास बात बताऊंगा, जो वर्क कल्चर जो दुनिया में क्या होता है, हम क्या एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उस पर भी मैं आप लोगों का तवज्जो चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले जिंदगी कुछ तो बताओ।

होनी चाहिए। मेरा तकिया कलाम भी है, मोर बजाना लसपा गाना सुनाते हैं गाने पे गाना, और अगला गीत इतना खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत है, जिसके लिए मैं नहीं चाहूँगा आपको ज़्यादा वेट करवा। मोहित चौहान सुजान डिमेलो की आवाज़ में फिल्म रॉकस्टार का तुम हो शाम के हिसाब से गाना बिल्कुल मुफीद है।

मोहित चौहान की आवाज़ में दोस्तों ये गाना इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, क्या कहें। मैसेजेस की भरमार तो एडवांस में है अपने पसंदीदा गानों के लिए, साथ ही साथ शुक्रिया करते हुए बहुत से लोग, जब मुझे बहुत क्यूट सा लगता है कि आप लोग फ़ोटो के ज़रिए चाय भी भेजते हैं ऑनलाइन की, कम से कम चाय ऑनलाइन भेज कर आपका हम मन बना सकते हैं, क्योंकि 5 से 8 के बीच में चाय का समय होता है जो आपका स्किप हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एक बात जो मैं खासतौर से बताना चाहता हूँ, और खासतौर से जो लोग विदेश में जब काम करने के लिए जाते हैं, दोबारा मुंबई आते हैं या भारतवर्ष में कहीं भी आते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें फ़र्क कॉरपोरेट जगत का ये लगता है कि वहाँ जो पर्सनल स्पेस के लिए जो तरजीह दी जाती है, जो इंपॉर्टेंस दी जाती है, वर्किंग आवर्स का जो एक रिस्पेक्ट है, नॉन वर्किंग आवर्स का खासतौर से जितनी इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ पर कितना डाइल्यूट हो चुकी है। अगर वहाँ आप 6 बजे तक काम कर रहे हैं तो 6 तक काम कर रहे हैं, फ्राइडे इवनिंग आपका जो समय है उसके बाद निकल गए तो सीधे सोमवार को बात होगी, मेल वेल जो होना है मंडे को होगा। यहाँ की तरह नहीं कि नॉर्मल डे पर भी सैटरडे भी संडे भी कोई फ़र्क रखा नहीं गया है, आप काम से निकल चुके हैं, आप घर जा चुके हैं, आप घर पर भी हैं, रात को लेट आवर्स में अगर आपको बिल्कुल हक से कॉल करते हैं बिना किसी गिल्ट के फील किए कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि कल्चर ऐसा हो चुका है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप भले नौकरी 6-7-8-9 घंटे की कर रहे हैं मगर 24 घंटा आप कंपनी के लिए हाजिर होने चाहिए। तो जब आप बाहर जाते हैं देखते हैं 6 बज चुके हैं, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दोस्तों से कैचअप कर रहे हैं, कैफेज में बैठ रहे हैं, जो कोई भी अपनी हॉबी उसे परसू करने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे भी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो उनका समय है, मी टाइम, या मी टाइम नाम का कॉन्सेप्ट काम में नहीं रह गया। और जब कोई किसी को मेल भी करता है तो एक उसके लैंग्वेज का जो टोन होता है, एक अलग जो रिक्वेस्टिंग टोन होता है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू दिस, और ऐसा करके सीनियर जूनियर से बात करता है, लेकिन यहाँ तो प्लीज सेंड इट एएसएपी। तो ये जो कल्चर फर्क है, जैसे हम यहाँ पर बैठेंगे हॉर्न मारेंगे, जब विदेश में जाएंगे तो उनके नियमों का पालन करेंगे, हॉर्न नहीं मारेंगे, स्टाइल में चलेंगे, सब कुछ करेंगे, सीधे आते ही उसी भसड़े में लग जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बदलाव लाने हैं ना, धीरे धीरे अचानक में सब सोचेंगे यार वो तो कर रहा तो मैं क्यों करूं, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी धीरे धीरे, जितने भी लेवल्स आपकी हो सकते हैं। अगर आप सीनियर आप काम करें तो कोशिश कीजिएगा ना कि जब नॉन वर्किंग आवर्स में सुपर इमरजेंसी ना हो तभी भी एक रिक्वेस्टिंग टोन के साथ पूछ सकते हैं, ये नहीं अगर आप सीनियर है तो आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि वो उनका प्राइवेट स्पेस है, प्राइवेट जोन है, किस जोन में कब एंटर करना है नहीं करना है। जैसे अगर हम भी अब घर पे जाते, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके कमरे में जाना है तो नॉक करके पूछते हैं, क्योंकि तहजीब का हिस्सा है। तो कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत सारी तहजीब, खाली आप सिर्फ कपड़ा पहनने तक, प्रेजेंटेशन तक और पावर पॉइंट्स किस तरह से करना है ये सब चीज़ें वो मत रखिए, बहुत कुछ होता है तहजीब में आता है, अपने से जूनियर का रिस्पेक्ट करना, समय के साथ रखना। और जो लोग एकदम परेशान से रहते हैं कि मतलब इतने बर्नआउट हो चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब जब मैंने, मेरे पहले जो शो कर रहे थे मराठी का शो था, उनसे मैंने बाय किया और पूछा, फिर अब हम तो हैं चर्च गेट में, वो काम करने आते हैं पनवेल से, पनवेल के आगे पेंट से, तो उसने कहा था सर ठीक है मैं, कोई नहीं आजकल शाम में थोड़ी भीड़ शायद कम हो और मैं यहाँ से स्टेशन पहुँच जाऊँगा और स्टेशन से ट्रेन से पनवेल 1 घंटे पहुँच जाऊँगा फिर, लेकिन वहाँ से पेंट पहुँचने मुझे 1.5 घंटे ट्रैफिक में लग जाते हैं। फिर उसने कहा नहीं बट कोई बात नहीं, मैं रात को 10 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। तो मैं हैरान था, 4 घंटे की जर्नी एक तरफ से, इतना सब कुछ हम जिंदगी में, हम ऑफिस पहुंचने के पहले ही एक युद्ध लड़ चुके होते हैं और उसके बाद ऑफिस पहुंच के और ज़्यादा युद्ध लड़ना होता है। तो बहुत कुछ चल रहा होता है जिंदगी बॉस, तो किस तरह से आप अपने कलीग्स की जिंदगी आसान कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, थोड़ा ह्यूमन हैंड कहते ना कि हाथ बढ़ाकर देखिए, थोड़ा अप्रोच अच्छा कीजिए, ह्यूमन टच लोग भूलते जा रहे हैं, क्या करें, हमारा काम है शो के जरिए लोगों को याद दिलाना। कभी कभी थोड़ा 2-3 मिनट का लंबा भाषण दे देता हूँ जो लग भी सकता है, लेकिन यार हमारे आपके बीच की बात है, मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस फिल्म ने कितना 500 करोड़ कमाया 800 करोड़ कमाया, उस फिल्म ने ये किया वो किया, नहीं ये हमारी बात है, ये आकाशवाणी है 107.1 MHz, जब महसूस करते हैं वो बोलते हैं। हरिहरन और सुखेंद्र की आवाज़ में ये गीत एकदम सन्नाटे में सुनिएगा, नहीं सामने तू, ये आवाज़ ये लगाएगी अलग नजर आएगा, और इस गीत को अपने अंदर आप समाहित कर सकते हैं।

क्या गीत और क्या एनर्जी। और ये गाने का सबसे पहले लगाने का तात्पर्य भी यही था कि हमारे लिसनर प्रफुल्ल अर्शेकर जी ने बताया कि आज अजय गोगावली जी का जन्मदिन है और अजय गोगावली जी ने इस गाने को गाया है, इसकी तर्ज बनाई है, कमाल का गीत है, गाना मर चुका है। अजय जी और आपकी कला करी जो भी होती है, जो भी संगीत होता है, वाकई क्या दिल से होता है। हम तुम कार्यक्रम में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का आगाज करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मुकदम करता हूँ। और कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेशा हमने गाना लगाया और इसके बाद जो गीत सुनना चाहते हैं अलग अंदाज हो जाता है, मूड चेंज, ट्यून चेंज, गाना चेंज, यानी जब रिक्वेस्ट आवर आता है तो दोस्तों 1-2 ऊपर नीचे सब कुछ होने लगता है। अगला गीत प्राची शिंदे सुनना चाहती हैं, ऑल इज वेल फिल्म का गाना। वो कहते हैं इस फिल्म को आज 11 साल हो गए और गीत है बातों को तेरी हम भुला ना सके। फिल्म में थे अभिषेक बच्चन एंड प्राची शिंदे जी, आपकी पसंद का गाना आपके लिए आ रहा है और आवाज अरिजीत सिंह की। 8657661071 8657661071 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अपनी पसंद का गीत या अपनी कोई बात की रिक्वेस्ट या फरमाइश या गुजारिश या दरख्वास्त या इल्तिजा कर सकते हैं।

अगली फरमाइश है राकेश माथुर की और वो सुनना चाहते हैं फिल्म रावण का गीत रांझा रांझा। 8657661071 8657661071।

साहब मिश्र 33 मिनट हो चुके दोस्तों, और ये फरमाइश आई थी, जीने लगा हूँ आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, ये फरमाइश थी अक्षय की। और अक्षय ने हमें कॉल किया था वडोदरा से। अक्षय जी, आपने एक शिकायत भी दी कि बहुत हफ्तों से मैंने सबका गाना प्ले नहीं हो रहा और आपकी पसंद का गाना प्ले हो गया है। हमारी कोशिश यही रहती है सबकी पसंद का गाना प्ले करने की ज़्यादा से ज़्यादा। अगला गीत हरजीत सिंह की आवाज़ में, सुनो ना संगे मरवर, और इसकी फरमाइश की है श्रीकांत जेना भुवनेश्वर उड़ीसा से। श्रीकांत जी, आपका ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में सीधे आप तक आ रहा है।

सात बजकर 37 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अगली फरमाइश आई है महाराष्ट्र में रोहा से कंचन के रोज सुनना चाहते हैं नगाड़े संग ढोल बाजे श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज में। फिल्म का नाम है रामलीला 8657661071 8657661071। मैं आपका दोस्त शिव, आप लोग सुन रहे कार्यक्रम हम तुम और ये चैनल 107.1 FM रेनबो। मोर बजाना लेस पकाना सुनाते हैं गाने पे गाना।

7:42 हो चुके हैं और अगली फरमाइश बहुत सारी हैं और अगली जो फरमाइश आ रही वो है संगीता जी जो कनाडा से हमें जिन्होंने मैसेज किया और जो सुनना चाहती है अपने पसंद का गाना और साथ ही साथ उन्होंने अपना गीत भी बताया और कहा कि अगर आपका पसंद का भी कोई गीत है तो उसे भी डेडिकेट कर सकते हैं। संगीता जी अगला गीत जो आपने चाहा है और पसंद का है और वो है फिल्म का नाम है जैकपॉट इस मौसम के अनुसार। अब कनाडा में क्या मौसम है वो तो पता नहीं लेकिन यहां के मौसम के अनुसार ये गाना एकदम फिट बैठता है और अरिजीत सिंह की आवाज़ है और ये गाना आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगा। 8657661071 कभी जो बादल बरसे अरिजीत सिंह की आवाज़ और ये गीत की फरमाइश कनाडा से संगीता जी ने।

अगली फरमाइश आई है बैंगलोर से रिधिमा गुप्ता की। रिधिमा गुप्ता सुनना चाहती हैं अरमान मलिक की आवाज में फिल्म असर का ये गीत। रिधिमा जी बैंगलोर में वो कहनी खासा से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, कह सकते हैं बदनाम हो चुका ट्रैफिक जैम के लिए, और वो कह रही हैं कि आपके ऐप के जरिए इस ट्रैफिक जैम से जो भी छुटकारा पाने का हमें मौका मिल रहा है, ये ट्रैफिक जैम में बहुत बड़े रिलीफ का काम कर रहा है आपका गीत और आकाशवाणी, और मैं चाहूँगी कि अगर मेरी पसंद का गाना प्ले हो जाए तो मुझे और खुशी होगी। तो रिधिमा जी आपकी पसंद का गाना बोल दो नज़र अरमान मलिक की आवाज़ में आप तक पहुँच रहा है सीधे मुंबई से बैंगलोर, और इस गाने का स्टार्ट जो है टिपिकल अरमान जी अपने एक अंदाज में करते हैं, मिस मत कीजिएगा।

7:53 हो चुके हैं दोस्तों, लगता है बस अभी 5 बजे कार्यक्रम शुरू किया था और 8 भी बज गए हैं। आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत होने वाला है पलक मुछाल की आवाज में। वैसे 2 गीत है, दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, ये भी एक गाना काफी समय से पेंडिंग है जो अकोला से सुनना चाहते हैं। कोशिश करूंगा दोनों गाना अगर प्लेस हो सके तो, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। हर हाल में खुश रहने की कोशिश कीजिए, मुस्कुराते रहिए, माँ की सेवा कीजिए। और साथ ही साथ जो मैं बार बार कह रहा था कि कॉरपोरेट जगत लोग जिन पे जिम्मेदारी है और जो अपने से नीचे माताहत आपके जो काम कर रहे हैं उनकी क्या कहते हैं ना कि पर्सनल वेलबींग का ख्याल कीजिएगा, उनकी प्राइवेसी का, उनके कहते हैं ना उनका जो इलाका है उसका ख्याल कीजिए। और सब कलीग बनकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जैसे बाहर होता है। और कोई भी अगर आपके बॉस ने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हक बनता है कि आप भी वही उसी चीज़ का अनुकरण करें। कुछ तो फर्क लाइए, सब लोग एक तरीके नहीं हो सकते, हमें बदलाव लाना होगा। इसलिए मेहनत कीजिए उस तरफ और साथ ही साथ अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने आप रहना सीखिए, अपने ख्यालों में भी रहना सीखिए। आसपास इर्द गिर्द ज़रा क्या हो रहा है उस पर नज़र डालिए, उस स्क्रीन से नज़र हटा के तो देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, स्क्रीन की रंगत में रह जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए बार बार कहता हूँ, वक्त रहते समझ जाइए, सब कुछ आ सकता है, बीता हुआ समय नहीं आ सकता, उसका कोई तोड़ नहीं, ना कोई पैसे खरीद सकता है। बस आपको पता चलने की देर है, पता नहीं जब कब पता चलेगा आपको कि असली करेंसी समय है। थोड़ी देर बाद पता चलता है, जब पता चलता है तब तक बहुत समय और बहुत करेंसी का लॉस हो चुका होता है। इसलिए अपने साथ अपने दोस्त शिव कुमार सिंह को दीजिए इजाजत, मेरी आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। सुनते रहे FM Rainbow 107.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा, जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून

0: लागू हो गया था, परंतु विगत की टीएमसी की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया। परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
2: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
3: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
4: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
5: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग

0: अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जेपी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।

नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सरद साहब की आवाज़ है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जज्बात मेरे हैं। सचमुच ये ज़िंदगी जब भी आपकी बज़्म में लेकर आती है, आपके इस महफिल में लेकर आती है जो हम सजाते हैं आपके लिए आकाशवाणी की रेनबो पर, जिसे आप सुनते हैं 102.6 माइंड ब्लोइंग मेगाहर्ट्ज़ पर, तो समझ लीजिए कि बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा फुर्सत से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है आपके साथ। और मैं तो यूं कह ही देता हूं अक्सर ज़िंदगी से कि सितारे भी जाग रहे हों, सितारे भी जाग रहे हों, रात भी सोई ना हो, ए दिल मुझे वहां ले चल जहां उसके सिवा कोई ना हो। और देखिए, जब मैं कहता हूं ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी मुझे ले आती है यहीं आपकी रंगे महफिल में। तो चोट अगर जिगर पर खाई ली है तो फिर उस दर्द को बयां भी कर देते हैं। चंदन दास आ रहे हैं बड़ी प्यारी गजल लेकर।

चोट जिगर पर खाई ऐसे कि हमें भी एक पुरानी चोट याद आ गई और मसला कुछ ऐसा हुआ था कि यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जैसे रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई। पहले मुझे देखकर वो मरहम सी हो गई, फिर अपने ही हसीन ख्यालों में खो गई। बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भाग गया। सांसों से भी करीब आ गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। बशीर बद्र साहब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गजल आपके पेश नजर, सुनिए जरा।

यूं बेसबब ना फिरा करो, जो कहा नहीं सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, है ना। कितनी प्यारी सी बात है कि जो कहा नहीं सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, बस दिल से दिल के रिश्ते को जोड़ लिया करो। जब से दिल का रिश्ता दिल से जुड़ जाएगा तो फिर सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, है ना। और इन्हीं बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बड़े सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि मैसेजेस नहीं, आपकी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे, है ना। अमित अंचल सासाराम बिहार से लिख रहे हैं कि आपकी गज़लों का इंतज़ार रहता है, गज़ल ही हैं वो एहसास जो जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ा कमाल का अशआर भी इस बारे में कि पहाड़ से भारी और रुई से हल्के जज्बात को बड़ी नफासत के साथ अंदाज करने का नाम है गज़ल। इसीलिए गज़ल ज़िंदगी की बहुत सारी परिस्थितियों को बयां कर देती है। पसंद हमें हमारी गज़लें बहुत आ रही हमारे दोस्तों को, इसलिए काम करते हैं गज़लों के सिलसिले को ना रोकते नहीं हैं, आगे बढ़ाते हैं।

और अगर गज़लों की बात हो तो शख्स का नाम लेते ही गज़लों की हर महफिल में महक जाती है, जिन्होंने खुद गाया है कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। The one and only king of गज़ल जगजीत सिंह साहब आ चुके हैं, इस्तकबाल कीजिए।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी के रेनबो आप सुन रहे हैं, रात के 11:31 और 12 सेकंड हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विकास, और प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा रंगे महफिल, जहां गीत गजल और बहुत सारी बातें आपके करीब आने लायक बातें, है ना, करीब आने लायक यानी आपके दिल तक पहुंच जाने वाली बातें, और ऐसी बात जिसमें एक एहसास है। एक बड़ी प्यारी बात सुनाऊं आपको, लिखते हैं कि इश्क जितना था जहां में सब तुम्हारे पास है, इश्क जितना था जहां में सब तुम्हारे पास है, मेरे दिल के चोर हो तुम, क्या तुम्हें एहसास है। ये बात पंकज जी के लगा दें, पंकज जी जो कुछ नशा सा है उनकी बातों में, उनके अंदाज में, जब तक उनको सुना जाएगा तब तक गजलें जिंदा रहेंगी।

झड़ते हैं आपके मैसेजेस से। और ऐसे मैसेजेस में कई बार बड़ी कमाल की शायरी भी आप भेज देते हैं, तो हम पढ़ देते हैं आपकी तरफ से भेजी हुई एक शायरी। लिखते हैं कि तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है। बड़ा प्यारा गीत है ये जिसको आपने भेजा और हमने आप आपके ज़रिए से सबको सुना दिया, है ना। इस प्यार को, इस मोहब्बत को बरकरार रखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी की जो किताब है उसमें सबसे जो अहम पन्ना है वो मोहब्बत का ही है। जिसने इस मोहब्बत को जी लिया उसने सब कुछ पा लिया।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मिताली जी की आवाज़ जैसे मिसरी घुल जाती है कानों में, है ना। एक बात कह दूँ मैं आपसे, सोच तो रहा था कि ना कहूँ लेकिन अब कह देता हूँ, बड़े भारी मन से कह रहा हूँ लेकिन कह देता हूँ कि उनको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, उनको भी हमसे मोहब्बत हो ये ज़रूरी तो नहीं, इश्क ही इश्क की कीमत हो ये ज़रूरी तो नहीं। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत आपको हो जाए और वो बदले में आपसे मोहब्बत ना कर पाए तो भी बस राह चलते हैं, एहतराम करते चलिए, बाकी तो क्या है जीवन, कोई बात नहीं। सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं, कुछ खो भी जाए तो उसके खोने के एहसास की भी एक अपनी कीमत होती है। बस इसी एहसास के साथ

किसी बात के साथ आज इस रंग महफिल में आखिरी रंग आपके नाम विकास को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार जुम्मे की रात, ठीक है? बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे यानी आकाशवाणी रेनबो के साथ। बाय बाय, खुदा हाफिज़।

12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस समय के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुपात में कम रहने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों और को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत को दुनिया की नंबर एक टीम नीदरलैंड्स के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे पूल चरण के इस मुकाबले में भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है।

0: आकाशवाणी
1: 212 बजकर 2 मिनट और 52 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है स्वामी।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही।

0: मुझे।
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: और दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं नूरी फिल्म का गीत, आवाजें नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: और दोस्तों, अब जो गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ उसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री फिल्म में लता मंगेशकर को, और आइए अब सुनते हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत, जिसे गाया है नितिन शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों 12:33 और 37 सेकंड हुए हैं। आप आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया और अब सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म ठोकर का ये गीत।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म शंकर हुसैन से, आवाज लता मंगेशकर की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लीजिए सुनिए येसुदास को फिल्म लहू के दो रंग में।

और दोस्तों कार्यक्रम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं यशोदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बैठक में जयपुर घोषणा पत्र पारित किया गया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। और महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नए प्रारूप के तहत पूल ई से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत के अगले मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और चीन से होंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 1:02 और 50 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं सुहानी रात। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

दो बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों

बैठक संपन्न हुई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बैठक में जयपुर घोषणा पत्र पारित किया गया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल मुकाबले में नीदरलैंड से भारत 0-2 से हराया। अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी पूल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और नीदरलैंड्स की चीन पर जीत की उम्मीद करनी होगी। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोजक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते और स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। ये उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। ये थे मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 2:03 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आज जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोगों का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर के ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बैठक में जयपुर घोषणा पत्र पारित किया गया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। भारत की मेजबानी में आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण के पूल मुकाबले में नीदरलैंड ने भारत को 2-0 से हराया और अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी पूल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और नीदरलैंड की चीन पर जीत की उम्मीद करनी होगी। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल डोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते और स्विट्जरलैंड में लुसाने में डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। 3:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अचित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम कुमार सानू जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: 3:29 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: 3:38 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो सरकार की नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोगों का भी आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों के देश से बाहर भेजने और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बैठक में जयपुर घोषणा पत्र पारित किया गया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। भारत की मेजबानी में आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल डोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते। और स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 4:03 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सारेगामा।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से।

4:30 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सारेगामा मेरे यानी अलचित के साथ।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: चार 4:42 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सारेगामा मेरे यानी अर्चित के साथ।